0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਨ ਕਰੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ ਡੀ ਟੀ ਐਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ तत्व, चिकित्सा उत्पाद, विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई।
2: हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और नहान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिलेगी और क्षेत्र में शांति तथा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा

0: होगी, साथ ही भविष्य के लिए मजबूत और आधुनिक सैन्य क्षमता विकसित करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दौरान स्वदेशी तकनीक से विकसित आधुनिक सैन्य प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से 40 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए देशव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच अभियान की शुरुआत करेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद के शपथ लेने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असि आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से ज्ञान अमृत।

इंसान होने के नाते एक कोशिश करनी चाहिए है कि हर एक का भला होवे। हर एक वास्ते दुआ की जानी चाहिए है। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाएं।

भरद्वाज मुनि को श्री राम कथा सुनाते हुए याज्ञवल्क ऋषि बोले, विधाता जब जिसके विपरीत होता है तो धूल भी उसके लिए पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता काल स्वरूप और मामूली रस्सी सांप के समान काटने वाली बन जाती है। राजा प्रताप भानु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणों द्वारा अभिशप्त होकर राजा प्रताप भानु कालांतर में रावण नामक राक्षस हुआ। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्मा और मंत्री धर्मरुचि ने अपने ज्ञान, विवेक तथा आस्था के कारण विभीषण का शरीर पाया। रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण ने कठिन तपस्या की। अपने उग्र तप के कारण रावण ने ब्रह्मा और शिव से ये वरदान प्राप्त किया कि वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर कोई उसका वध न कर सके। कुंभकर्ण का आहार देख ब्रह्मा भी आतंकित हो गए, अतः सरस्वती को प्रेरित कर उन्होंने उसकी मति फेर दी और उसने 6 महीने की नींद और मात्र 1 दिन का जागरण मांगा।

0: आपके अंदाज में कहानी सुनाई जाएगी हीरो हीरोइन। दैनिक वाच के 15 मिनट होएगा प्रोग्राम फौजी मेरा लई। बाद दोपहर 2:30 बजे रंगली धरती। अज के कलाकार उस्ताद पूरन शाह कोटे। शाम 4 बजे मुख खबरां ते उस तो बाद पंजाबी फिल्मों तो गीत सुनोगे। श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण शामी 4:30 बजे ते शाम 5:30 बजे तुसी सरवण करोगे गुरबाणी विचार प्रोग्राम। देहाती प्रोग्राम का समा रहेगा शाम 6:30 बजे जिस विच कम दीआं गल्लां होणगीआं। मंडियां दे उतरा चढ़ा दे वेरवे बारे जानकारी दित्ती जाएगी। सैलेश तैयार करना इस विषय ते जानकारी देंगी डॉक्टर नवनीत सिंह। इस अलावा गीत संगीत कल का प्रोग्राम ते मौसम दे हाल बारे भी दस्या जाएगा। रात 7:40 समाचार दर्शन ते रात 7:50 गसलां दा प्रोग्राम होएगा आबशार। रात 8 बजे समा रहेगा प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दा। रात 9:15 स्पॉटलाइट। रात 9:30 बजे कंट्री वाइड। रात 9:45 इनसाइट्स। ये प्रोग्राम दिल्ली केंद्र तो रिले होंगे। 10 बजे दिल्ली केंद्र तो ही प्रोग्राम होगा खेतरी सुगम ते लोक संगीत का प्रोग्राम। रात 11 बजे हिंदी ते 11:05 अंग्रेजी समाचार होंगे। प्रादेशिक खबरों का समा रहेगा दिन 1:10 ते शाम 6:20। DTH की आकाशवाणी पंजाब सेवा दे जलंधर केंद्र तो प्रोग्राम होएगा खतां ते आधारित चिट्ठियां मिठियां। समा रहेगा बाद दोपहर 3 से 4 बजे तक। परिचय अंतर्गत इस सन साढ़े अज के बाकी रेंदे प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समा। इस समय सवेर दे 6:55 हो रहे ने। सुनदे हां समाचार संस्कृत विच।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। भारत वियतनाम देशयोर मध्ये डिजिटल प्रौद्योगिकी दुर्लभ खनिजाः चिकित्सा विनियमनम् सार्वजनिक क्षेत्रस्य लेखा परीक्षा डिजिटल व्यवहारः संस्कृतिः पर्यटनम् इत्यादिषु बहुविध क्षेत्रेषु सन्धयः कृताः। नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अथ वियतनाम राष्ट्रपतिः टोलाम इत्यनयोर मध्ये द्विपक्षीय वार्तायाः अनन्तरं सन्धि विज्ञप्तिपत्रेषु हस्ताक्षराणि कृतानि। संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमंत्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् व्यापक विमर्शानन्तरं पक्षद्वयेन स्वसंबंधं वर्धित व्यापक रणनीतिक सहयोग पर्यन्तं अग्रे साधयितुं निर्णयः कृतः।
2: कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $25 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
1: राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू ह्यः सायं राष्ट्रपति भवने स्वस्य वियतनाम समकक्षस्य टोलाम इत्यस्य स्वागतं कृतवती। आगन्तुकस्य गणमान्यस्य सम्मानार्थं सा भोजमपि आयोजितवती। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् भारत वियतनाम सम्बन्धस्य उन्नत व्यापक रणनीतिक सहयोगस्य अभिवर्धनं न केवलं द्विपक्षीय सहकार्यस्य गतिं प्रदास्यति अपितु क्षेत्रे शान्ति समृद्धौ अपि योगदानं करिष्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह एवं रक्षा प्रमुखः जनरल अनिल चौहानः अद्य जयपुरे संयुक्त सेनापति सम्मेलनस्य द्वितीय संस्करणस्य शोभां वर्धयिष्यतः। द्विदिवसीय सम्मेलनस्य अस्य मुख्य विषयो वर्तते नूतन क्षेत्रेषु सैन्य क्षमता इति। एकस्मिन् उद्वेगकर घटनायां

0: शिवबंगालस्य उत्तरचतुर्विंशतिः परगणमण्डलस्य मध्यग्रामे भाजपादलस्य नेता सुवेन्दु अधिकारी इत्यस्य निकटसहायकः चन्द्रनाथरथः अज्ञात आक्रमणकारिभिः भुशुण्डिकया प्रहृतः। समाचारानुसारं गतरात्रौ दोहरिया नगरे मोटरबाइक चालकाः दुष्टाः आततायिनः तस्य कार्यानस्य उपरि यथेच्छं गोलिकाप्रहारं कृतवन्तः। चन्द्रनाथं तत्क्षणमेव स्थानीय चिकित्सालये प्रेषितः, परन्तु सः मृतः इति घोषितः। तस्य चालकः बुद्धदेव बेरा अपि गोलिकाभिः बहुधा व्रणितः, अथ गंभीरस्थितौ कोलकाता चिकित्सालये स्थानान्तरितः वर्तते। बिहारस्य मुख्यमंत्री साम्राट चौधरी अद्य तस्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। पटनानगरस्य गांधी मैदानम् इत्यत्र अद्य मध्याह्ने द्वादशवादने आयोजिष्यमाणे शपथग्रहण समारोहे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, एनडीए इति राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधनस्य अनेके वरिष्ठ नेतारः च भागं गृहीष्यन्ति। अस्माकं संवाददात्रा सूचितं यत् पूर्व सर्वकारे अनुसृतस्य सूत्रस्य आधारेण मंत्रिमंडल विस्तारः क्रियते। प्रायः 15 भाजपा विधायकाः, 14 जेडीयू विधायकाः मंत्रिरूपेण शपथं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः परमाबीरो इत्यत्र तस्य सूरीनाम समकक्षेन मेलविन बोबा इत्यनेन सह मिलितवान्। भारतीय सूरीनाम प्रतिनिधि मंडलानि नवम संयुक्त आयोग सभायां भारत सूरीनाम संबंधानां व्यापक समीक्षायाः आयोजनं कृतवन्तः। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशति क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सनराइजर्स हैदराबाद दलेन पंजाब किंग्स दलं 33 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ सुपर जायंट्स अथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलयोर्मध्ये लखनऊ नगरस्य भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट क्रीडांगणे प्रतिस्पर्धा भविष्यति इति वार्ताः।
1: असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश ने मुख खबरां। तमिलनाडु विच टीवी के पार्टी के मुखी सी जोसफ विचे ने राजपाल विश्वनाथ अरलेकर नाल मुलाकात करके राज विच नवी सरकार बनाउन दा दावा पेश किया है। पछमी बंगाल विच नवी बीजेपी सरकार दा सौ चुक समागम 9 मई नू होवेगा। असाम दे मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा ने राजपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य नू अपना इस्तीफा सौंप दिता है, जिस नाल सूबे विच नवी सरकार दे गठन दा राह पदरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते वियतनाम दे राष्ट्रपति तुलाम विचकार नवी दिल्ली विच गलबात तों बाद कई समझौतियां ते दस्तखत किए गए ने। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने जलंधर से अमृतसर में हुए 2 धमाकों के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को जिम्मेवार ठहराया है। सरकार ने कहा है कि घरेलू LPG वंड देश भर में आम मांग जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों 4 दिनों की शुकराना यात्रा की शुरुआत। कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारू चक ने कहा कि पंजाब में किसानों को कणक खरीद की अदायगी वजो 29,000 करोड़ तो वध रुपए ट्रांसफर किए गए ने। मौसम विभाग ने अज पंजाब विच कुछ थावां ते तेज हवावां ते गरज चमक बारे येलो अलर्ट जारी किया है। IPL क्रिकेट विच हैदराबाद विच सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स नू 33 दौड़ां नाल हरा दिता है। इस सन हुण तक दीआं मुख खबरां। अगलियां मुख खबरां सुणगियां सवेरे 9 बजे।

कुछ और रोचक तथ्य हमारे तनु दसते हैं। दुनिया की सब तो पुरानी किताब लगभग 2500 साल पुरानी है, जिसनों की मिश्र विच पाया गया सी। दुनिया की सब तो ज़्यादा विकन वाली किताब बाइबल है। एक व्यक्ति ने एक ही दिन विच 1000 तो ज़्यादा किताबा पढ़न का रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया की सब तो छोटी किताब इन्नी छोटी है कि उन्हें पढ़ने के लिए माइक्रोस्कोप की लोड़ होंदी है। भारत विच हर साल 1000 नवी किताबा छपदिया ने, ते जिन्हां विच बच्चों दी किताबां भी बहुत सारियां होंदियां ने। सो यह है कि किताबां साडियां दोस्त ने। जेकर तुसी मोबाइल तो दूर हो जाओ तो किताबां नूं अपना बेहतरीन दोस्त बनाओ, क्योंकि मोबाइल जिहड़ा है बहुत तरह दीआं गल्लां नूं नैगेटिव तौर पर भी करता है। इस करके जेकर जिंदगी विच छापक ही सोच रखनी है तो किताबां नूं अपना दोस्त बनाओ। हाज़र हुंदे हां कि तो बाद

वैसे देखा जाए तो असं हमेशा ही कल की चिंता करते हैं, अज की हो रहा हूँ की हो रहा है, असं इस बारे घट ही सोचते हैं। हूँ किसी नगर में एक सेठ रहते सन, तो उन्होंने बहुत मेहनत की, तो इन्ना पैसा कमा लिया कि 7 पीढ़ियां तक उन्होंने पीढ़ियाँ खा पी सकदियां सन आराम नाल। ते फिर उन्होंने सोचा कि हूँ मैं 7 पीढ़ियां तक पैसे कमा ले ने, 8वीं पीढ़ी का की होएगा। सेठ जी सोचण लगे तो बड़े ही तनाव में आ गए, बहुत ही इलाज कराया पर कोई फर्क ना पिया। एक दिन सेठ जी नूं मिलन उन्हां दा दोस्त आया, हाल चाल पुछया। सेठ जी ने कहा इन्ना कमाया फिर भी 8वीं पीढ़ी दे लई कुछ नहीं बचा। दोस्त बोलिया एक महात्मा जी ने जेकर तुसी उन्हां कोल जाओ तो तुसी सुबह खाना लैके जाओ, थोड़ा रोग ठीक हो जाएगा। अगले दिन सेठ जी भोजन लैके महात्मा जी कोल पहुँचे। महात्मा जी ने आदर नाल उन्होंने बिठाया, फिर उन्होंने अपनी पत्नी ने आवाज़ दी। सेठ जी भोजन लैके आए ने, खाना लैके आए ने, तो इस ते महात्मा जी की पत्नी बोली अज का खाना तो कोई दे गया है। महात्मा जी ने कहा सेठ जी अज का खाना तो कोई दे गया है, इसलिए असी थोड़ा ये खाना स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं ले सकते। साडा नियम है कि जो सवेर वेले एक समय खाना दे जाए बस उन्हें ही स्वीकार करते हाँ। सेठ जी बोले कि मैं कल लैके आवा ये खाना, तो महात्मा जी बोले असी कल दे लई अज नहीं सोचते, कल आएगा तो परमात्मा अपने आप ही सेवेगा। हुन सेठ जी उठे तो अपने घर वल चल पे, तो रस्ते विच सोच रहे कि मैं भी किदा दा आदमी हाँ, ये कल की चिंता नहीं करते तो मैं अपनी 8वीं पीढ़ी लई चिंता कर रहा है। तो इस गल ने उन्हां दी अखां खोल दित्तियां। सेठ जी ने सारी चिंतावां छड के बस अपने काम वल ध्यान देना शुरू कर दिता। साडे भी जिंदगी दा इह मकसद होना चाहिए कि असं या तो बीते हुए कल बारे सोचते हाँ कि ये कल क्यों होया, या फिर आने वाले कल बारे कि हाए कल की होएगा, आ की होएगा, वो की होएगा। साडा भी मकसद यही होना चाहिए कि जो हुण है उस बारे सोचना है, जो पल यही है यही पल जड़ा है थोड़ा अपना है, थोड़ा अपना प्यार है, उस पर जिन्नी मेहनत कर लोगे, जिन्ना गुड़ पालोगे उन्ना ही मिठा होएगा, है ना। प्रोग्राम है सोनी सवेर, हाजिर होने अच्छी गीत तो बाद।

एक आदमी हवाई जहाज विच बैठा लगातार दरवाजे ते खड़ी एयर होस्टेस हाथ जोड़ के बोली, सर थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है साड़ी इस फ्लाइट विच, थानू बिल्कुल ही घर वर्गा माहौल मिलेगा। आदमी बहुत ही घबरा गया, डर गया ते उसने बड़े ही घबराहट विच किया, पर एक गल याद रखियो मैडम जी, इत्थे मैं झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं करांगा। प्रोग्राम है सोनी सवेर। असीं आए दिन अखबारां विच कितें भी न्यूज़ विच देखते सुनते पढ़ते हाँ कि एक्सीडेंट हो गया इस थान ते। नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो दी जेकर असीं गल करिए तो 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1,72,000 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई तो औसतन हर 3 मिनट में एक मौत के हिसाब से प्रतिदिन यानी कि हर रोज़ 474 मौत हुई। यह सिलसिला जारी है, हजे भी जारी है ते जान माल की भारी हानि हो रही है। जो पिछले कुछ दिनों की गल करिए जड़िया इन घटनावान तो बिल्कुल साफ झलकता है। हुण 11 अप्रैल 2026 की ही गल करिए बिहार, हिमाचल प्रदेश 12 नू, उत्तर प्रदेश ते 12 अप्रैल नू ही कोटी सेखा पंजाब विच एक तेज़ रफ्तार कार ने दूजी कार नाल टकरा जान कारण दूसरी कार विच सवार एक औरत की मौत हो गई। 12 अप्रैल ही पटियाला ते लुधियाने विच दो बेकाबू कंबाइना ने एक औरत ते दो नौजवानों नू कुचल के मार दिता। तो असी गल कर रहे हैं इत्थे पंजाब दी, तां लगातार पंजाब विच वी ये जिहड़ियां हादसे ने हो रहे ने। 14 अप्रैल ही बठिंडा विच तलवंडी साबो विच विसाखी दे मेले तो परत रही एक बच्ची नू तेज़ रफ्तार कार ने मार दिता। तो 14 अप्रैल ही टांडा उड़मुड़ पंजाब विच एक बेकाबू कार डिवाइडर नाल टकरा के बुरी तरह टुट गई तो उस विच सवार औरत की मौत ते दो बाकी लोग भी जख्मी हो गए। तो 15 अप्रैल नू जलंधर पंजाब विच जमशेर रोड ते एक एक्टिवा नू ट्रक ने टक्कर मारती जिस नाल एक्टिवा सवार औरत की मौत हो गई। तो इस तरह ते 15 अप्रैल की गल करें तो श्री आनंदपुर साहिब पंजाब विच विसाखी मेले तो परत रहे फतेहगढ़ साहिब के पिंड मैण माजरी के श्रद्धालु की बस एक हादसे का शिकार हो जाने कारण उस विच सवार 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई ते बाकी दे 28 गंभीर रूप विच घायल हो गए। तो इस तरह की

0: जनगणना 2027 नू कामयाब बनाइए।
1: अमरिंदर कौर बराड़, ADC जनरल जलंधर।
2: ये जिहड़ा सेंसस साडा हैगा इस वार दा, ये हिस्टोरिक गैप ऑफ 16 ईयर्स तो बाद हो रहा हैगा। द लास्ट सेंसस वॉज हेल्ड इन 2011, बट COVID-19 दे चलदियां ये जिहड़ा सेंसस सीगा 2021 दे विच होना सीगा, बट 2021 दे विच ना हो के हुणे 2026 दे विच शुरू किया गया हैगा। इस सेंसस दी एक विलक्षण फीचर ये हैगी है कि इट इज़ अ ऑल डिजिटली डन सेंसस, बिकॉज पहला साढ़े जिहड़े सेंसस हुंदे रहे हैगे ने, जिवें तुसी सारे जानते ही हो कि ओ एन्यूमरेटर्स वालों पेपर्स दे उत्ते इनफॉर्मेशन जिहड़ी हैगी है फॉर्म्स भरे जाते सीगे, इनफॉर्मेशन एकत्र की जाती सी। एक पहला जिहा सेंसस है जिहड़ा हुण चल रहा है जिहदे विच सिर्फ तो सिर्फ डिजिटल तरीके दे नाल है जिहड़ी इनफॉर्मेशन एकत्र की जा रही हैगी है थ्रू अ मोबाइल ऐप। दूसरी यदि विशेष चीज़ ये हैगी है भी क्यों जो ये डिजिटल इनफॉर्मेशन एकत्र की जा रही हैगी है, इस कारण जिहड़ा ये सेंसस का नतीजा हैगा इहदियां जिहड़ियां फिगर्स हैगियां ने वो रियल टाइम प्रोसेस होणगियां अते बहुत थोड़े समय दे विच पबलिश होके तुहाडे सब दे सामने आउणगियां। उस तो सिवा इहदी इंपॉर्टेंट फीचर ये हैगी है कि इहदे विच साडा जिन्नियां भी वेलफेयर स्कीम्स हैगियां ने उहदा आधार बनना हैगा इह जिहड़ा डेटा इहदे च उभर के आउणा हैगा।
1: जॉइंट कमिश्नर डॉक्टर सुमनदीप कौर।
3: भारत सरकार द्वारा जनगणना की अधिसूचना जारी की गई है। ये जिहड़ी जनगणना है ये 3 पड़ावां विच होवेगी। पहला पड़ा जिहड़ा आ उह शुरू हो चुका है, जिहड़ा कि 30 अप्रैल तो 14 मई तक चलेगा। इस तो बाद जिहड़ी जनगणना होएगी वो 15 मई तो 13 जून तक घर घर विच जाके जनगणना होएगी, ते जिहड़ा इहदा आखरी पड़ा होवेगा वो फरवरी विच 2027 विच मुकम्मल होवेगा। उस दे विच असीं आबादी दी जनगणना करांगे। इस जनगणना दे नाल साडियां सरकारी पॉलिसियां बणनगियां। बहुत सालां बाद साडी जनगणना हो रही है, तां इस जनगणना विच असीं, मैं सारे जलंधर शहर वासियां नूं अपील करदी हां कि वह अपना अपना योगदान पान। यूथ ये बहुत अच्छी तरीके नाल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि यूथ फोन यूज़ करते हैं तो ये ऑनलाइन प्रोसैस है, तो असं यदी होर भी अवेयरनैस कर रहे हैं। तुहाडे माध्यम राही भी मैं ही अपील करना चाहवागी कि यदि वध तो वध यदि जनगणना दे विच आपां स्वै जनगणना करिए, तां जो जदों साडे घर गिनतीकार आण तां उहनां दा भी काम सिंपल होवे ते असीं एक अच्छी ते सही इनफॉर्मेशन दे सकीए कि ये जिहड़ी जनगणना वाले आणगे तुहाडे घरां दे विच आणगे उस दे विच कोई डरन घबराण की लोड़ नहीं। जिहड़ा भी गिनतीकार तुहाडे घर विच आएगा वो एक ID कार्ड अपने नाल कैरी कर रहा होएगा, उस दे उत्ते एक QR कोड भी दिता होएगा। जेकर असीं अपने फोन दे नाल उन्हां दा QR कोड स्कैन करांगे तां उन्हां दा पता चल जाएगा वो किहड़े महकमे तों आए आ ते उन्हां नूं किसने भेजिया होया है।
1: साबका कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया।
4: ये जनगणना भारत दे विच शुरू हो चुकी है, 30 अप्रैल तो 15 मई तक डिजिटल होएगी और पहली बारी है भारत दे विच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हां दी अगवाई थले ये जनगणना डिजिटल जनगणना हो रही है कि तुसीं इस जनगणना दे विच अपना वडमुला हिस्सा पाओ, देश की तरक्की लई जिहड़ा हैगा अपना असी अगाह जिहड़ा हैगा उहदे विच अपना योगदान पाईए। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ਏਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਵੇਰ 8 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ 8 ਵਜੇ ਸਾਡੇ 8 ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ। ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਡੇ ਅਹੈਡ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਫਰਹਤ ਨਾਜ਼। और अब मुख्य समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की गोली मारकर हत्या। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। और अब समाचार विस्तार से। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता के चयन के लिए बैठक करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 104 सीटें जीती हैं। यूडीएफ नेता राज्यपाल के तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है और वो फिलहाल चेन्नई में है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फार्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद है। तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में नई पार्टी को मिले जनादेश का सम्मान करती है और वो ना तो दोबारा चुनाव चाहते हैं और न ही किसी प्रकार का संवैधानिक संकट चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नई सरकार के गठन में बाधा नहीं बनेगी। स्टालिन ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया कि डीएमके अगली सरकार बनाने के लिए अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम AIADMK से बातचीत कर रही है। पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविंद्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कल राज्य सचिवालय नावन्न में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर समारोह की तैयारियों और चुनाव बाद हिंसा रोकने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रभारी सुनील बंसल, पार्टी नेता सौमित्र खान और ज्योतिमर सिंह महतो भी मौजूद रहे। श्रमिक भट्टाचार्य ने बताया कि पार्टी के नव निर्वाचित विधायक कल अपने संसदीय दल के नेता का चुनाव करेंगे। शनिवार सुबह

0: 10 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यदि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती हैं तब भी समारोह पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। एक रिपोर्ट।
3: ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था, जिसे सैन्य और गैर सैन्य साधनों के संयोजन से अंजाम दिया गया। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इस भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भारत ने न केवल इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, बल्कि इसने भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, इन तीनों बलों के बीच समन्वित कार्रवाई और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाओं का साहस और समर्पण लगातार राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई ने सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौती का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIEC से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इन हमलों में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। पुलिस महानिदेशक सिद्धिनाथ गुप्ता ने बताया कि घटना में इस्तेमाल वाहन बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। इस बीच उत्तर 24 परगना के बसीरहाट में एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता रोहित रॉय को

0: भी गोली मारी गई। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारियों के निजी सहायक की हत्या की कड़ी निंदा की है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम 3 दिन की भारत यात्रा के दौरान आज मुंबई में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति लाम मुंबई में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे।
1: वियतनाम के अध्यक्ष तो लाम का मुंबई का एक दिवसीय दौरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शुरू होगा, जिसमें अध्यक्ष लाम द्वारा रिंग द बेल सेरेमनी भी शामिल है। इसके बाद वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। बाद में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ भारत वियतनाम व्यापार मंच में भाग लेंगे। इस मंच का आयोजन CII द्वारा और वियतनाम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया जा रहा है। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम लोकभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष की भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई की यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, मुंबई।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास, सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
2: We have a deep and trusted relationship.
3: हमारा रिश्ता गहरा और भरोसेमंद है, क्योंकि यह लोगों के बीच मजबूत जुड़ाव की नींव पर टिका है। भारत इस बात की सराहना करता है कि सुरीनाम आज अपनी विकास यात्रा में बड़े कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
2: In its developmental journey.
0: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नौसेना ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित मार्ग नई प्रक्रियाओं के तहत संभव है। हालांकि उसने इसका विस्तृत विवरण नहीं दिया। इस बीच अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है, जिसने जारी अमेरिका नाकाबंदी की अवहेलना करते हुए एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का प्रयास किया था। लेबनान में इजरायली सेना ने बेरूत में एक लक्ष्य पर हमला किया, जिसके बारे में माना जाता है कि वह हिजबुल्ला के कुलीन रादवान बल से जुड़ा हुआ था। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि लक्ष्य व्यक्ति इजरायली सैनिकों और नागरिक क्षेत्रों पर हमलों के लिए जिम्मेदार था। हिजबुल्ला ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए इजरायली ठिकानों पर हमले और इजरायली बलों के हताहत होने की सूचना दी है। ये घटनाक्रम नाजुक सुरक्षा वातावरण को रेखांकित करते हैं, जबकि वार्ता जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। एक बयान में फ्रांसीसी सेना ने कहा है कि चार्ल्स डी गॉल विमानवाहक पोत समूह, जिसके साथ एक इतालवी और एक डच युद्धपोत भी है, दक्षिणी लाल सागर की ओर अग्रसर है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी की अगली कड़ी में आज हम प्रख्यात लेखिका शिव शंकरी से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
5: I was a Sanskrit student. I was not a Tamil student. So I never knew I can write nice Tamil grammar. My becoming a writer, the most beautiful, significant, meaningful accident in my life. I went from village to village to know that language, to know the habits, the rituals.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, वेल्स, नाइजीरिया, केन्या, जमैका और त्रिनिदाद तथा टोबैगो जैसे देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे। और IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के काना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: फरहत पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने पर आज सभी समाचार पत्रों ने सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान लिखता है, शौर्य का एक वर्ष जल थल

0: नभ में और सशक्त हुई सेना। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, भारत में पहली बार 50,000 जवानों की अलग ड्रोन फोर्स, किसी भी सैन्य हमले में सबसे पहले करेगी प्रहार। पत्र लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर का एक साल, अजय हिंदुस्तान के वो 88 घंटे जब हमारे प्रहार से घुटनों पर आ गया था पाकिस्तान। आज हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर ऑपरेशन सिंदूर पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, आज देश इस सैन्य अभियान की सफलता की वर्षगांठ मना रहा है। इसका संदेश यही है कि भारत के पास अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों है। दैनिक जागरण ने अमेरिका ईरान के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद शेयर बाजार में तेजी आने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, अमेरिका ईरान वार्ता में प्रगति से बाजार में उछाल, सेंसेक्स 941 अंक चढ़ा, ट्रंप के नरम रुख से क्रूड की कीमतों में आई गिरावट। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भारी बारिश, महाराष्ट्र में पारा 43.5 डिग्री के तक पहुंचा, अमर उजाला की सुर्खी है।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभाग
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। बिहार चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी टू एक्सपैंड हिज कैबिनेट टुडे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अमंग होस्ट ऑफ डिग्निटरीज टू अटेंड स्वेरिंग इन सेरेमनी इन पटना। Newly elected Congress MLAs of Keralam to meet in Thiruvananthapuram today to elect their leader. India marks first anniversary of Operation Sindoor, launched in response to Pahalgam terror attack. Bengal BJP leader Shubhendu Adhikari's close aide shot dead in North Chobis Parganas district of West Bengal. US and Iran closing in on agreement to end war in West Asia. France moves its carrier strike group to Red Sea as part of potential mission to secure Strait of Hormuz. And Delhi to host 2026 Commonwealth Table Tennis Championship. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary will expand his cabinet today. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and several senior NDA leaders will attend the swearing-in ceremony to be held at Gandhi Maidan in Patna at 12:10 p.m. Our correspondent reports that the cabinet expansion is being carried out based on the formula followed in the previous government. Around 15 BJP and 14 JDU MLAs are likely to take oath as ministers. Additionally, two ministers from Lok Janashakti Party, Ram Vilas, and one each from Hindustani Awam Morcha and Rashtriya Lok Morcha are expected to be inducted. The newly elected Congress MLAs of Keralam will meet at Thiruvananthapuram today to elect their leader. Congress-led UDF, which secured 104 out of 140 assembly seats in the state, will approach the governor once he reaches Thiruvananthapuram from Chennai. Kerala Governor Rajendra Vishwanath Arlekar, who is also holding the additional charge of Tamil Nadu, is in Chennai today. More from our correspondent.
3: In Keralam, meeting of the newly elected legislatures of Congress will be held today morning at Thiruvananthapuram. In the meantime, AACC observers who reached last night at Thiruvananthapuram will continue discussions with the individual MLAs. On the other hand, informal discussions between various constituents of UDF is also progressing on the ministerialship positions. Congress sources hinted that an immediate decision will be taken regarding the chief ministership and approach the governor to form government.
2: In Tamil Nadu, DMK chief M.K. Stalin has said that his party respects the people's mandate for a new party assuming power in the state, and he does not want another election or a constitutional crisis. He also said that his party will not stay in the way for the formation of a new government.

0: है कि पुलिस ने घटना छोड़ते गए वाहन बरामद कर ले ने। जानकारी मुताबिक हमलावर चार मोटरसाइकिलों से आए सन। इस दौरान एक होर बीजेपी वर्कर रोहित राय नूं उत्तर 24 परगना जिले के बसीरहाट में गोली मार दी गई है। उन्हों का हस्पताल च इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन विखे वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने उन्होंने सन्मान च खाने की मेजबानी भी की। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत के वियतनाम विचकार वधी हुई व्यापक रणनीतिक भाईवाली दोवां मुल्कां दरम्यान सहयोग नूं नवीं प्रेरणा देवेगी ते खिते च शांति ते खुशहाली नूं उत्साहित करेगी। उन्होंने कहा कि भारत वियतनाम संबंध इतिहासक सभ्याचारक ते संबंधां ते आधारित ने। हाल ही विच दोवां देशां दरम्यान रक्षा सुरक्षा व्यापार सेहत विज्ञान टैक्नोलॉजी ते सैर सपाटे वर्गे खेतरां विच सहयोग लगातार वध्या है। इस दौरान नवीं दिल्ली च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते वियतनाम दे राष्ट्रपति तो लाम विचकार गलबात तो बाद इस समझौते सहमत किए गए। एक सांझे बयान विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि दोवां मुल्कां ने व्यापक विचार वटांदरे तो बाद अपने संबंधां नूं एक वधी हुई व्यापक रणनीतिक भाईवाली तक वधाउण दा फैसला किया है।
1: कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $25 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
0: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम अज अपने 3 दिन भारत फेरी के हिस्से वजो मुंबई च ने। इस दौरान उन्होंने कई प्रोग्राम तय ने। यह खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर और यूट्यूब से सारा चैनल है @AIRRNU जलंधर। अज देश ऑपरेशन सिंदूर की पहली वरेगंढ मना रहा है। पिछले साल 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया सी, जिस तहत पाकिस्तान ते पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर च दहशतगर्दां दे 9 ठिकाणियां ते हवाई हमले किए गए सन। इन्हां हमलों च घट्टो घट्ट 100 दहशतगर्द मारे गए सन। यह कार्रवाई पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम च सैलानियों ते पाकिस्तान प्रायोजित घिनौने दहशतगर्दी हमले का भारत वालों ढुकवां जवाब सी। ऑपरेशन सिंदूर भारत की फौजी ते रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण विखाला सी, जिसनों फौजी ते गैर फौजी साधनों के सुमेल की वरतों करके अंजाम दिता गया सी। इस बहुपक्षी कार्रवाई ने दहशतगर्दी खतरियां नूं प्रभावशाली ढंग नाल बेअसर किया, पाकिस्तानी हमले नूं रोकिया ते दहशतगर्दी प्रति भारत की बिल्कुल भी बर्दाश्त न करन दी नीति नूं मजबूती नाल लागू किया। इस ऑपरेशन ने अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करते हुए रणनीतिक संजम बनाई रखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वरेगंढ मौके भारतीय हथियारबंद सेनावां की बहादरी ते कुर्बानी नूं नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश के हथियारबंद बलों की हिम्मत समर्पण लगातार देश की सुरक्षा नूं यकीनी बना रही है। इस दौरान भारतीय फौज ने अज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वरेगंढ मौके एक वीडियो जारी किया, जिस विच पाकिस्तान प्रायोजित दहशतगर्दी खिलाफ भारत की योजनाबद्ध सटीक ते प्रभावशाली कार्रवाई नूं उजागर किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ते चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान आज जयपुर च संयुक्त कमांडरां दी कॉन्फ्रेंस के दूजे एडिशन च शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय मुताबक ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस नवे खेतरां च फौजी समर्थावां ते केंद्रित ऑपरेशन सिंदूर की पहली वरेगंढ नूं मनाउण लई आयोजित की जा रही है। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानां ते बरामदकारां दीआं सारीआं समस्यावां नूं हल करन लई वचनबद्ध है। लखनऊ विच फल बरामदकारां अते होर हिस्सेदारां नाल गलबात करदिआं उन्हां कहा कि फ्रूट होराइजन 2026 प्रोग्राम दा उद्देश देश विच फलां दे उत्पादन गुणवत्ता सुधार प्रोसैसिंग ते बरामद नूं उत्साहित करना है। उन्हां कहा
2: इस आयोजन का उद्देश्य है फलों का उत्पादन बढ़ाना, गुणवत्ता क्वालिटी कैसे और बेहतर करें इम्प्रूव करें हम की कोशिश करना, फलों की प्रोसेसिंग उसको आगे बढ़ाना। हम ये चाहते हैं कि हमारे फल हमारी सब्जियां उनका निर्यात बढ़ेगा तो किसानों की आय भी बढ़ेगी और विदेशी मुद्रा भी हमारे देश में आएगी, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
0: किरत ते रुजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नवी दिल्ली कर्मचारी राज बीमा निगम ESIC के कर्मचारियों लिए एक देशव्यापी सालाना सेहत जांच पहलकदमी की शुरुआत करेंगे। इस पहलकदमी तहत 40 साल और इस तो वध उम्र के कर्मचारी मेडिकल कॉलेजों के हस्पतालों में सेहत जांच करवा सकेंगे। सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ने हरियाणा के चंडी मंदिर के कमान हस्पताल च अंगदान करने के एक प्रेरणादायक मामले की जानकारी दी है। मंत्रालय मुताबिक ब्रेन स्टेम डेड ऐलानी गई एक 41 साल औरत के परिवार ने अंगदान करने के फैसले नाल 4 लोगों नवी जिंदगी दी है। यह औरत भारतीय फौज के एक सेवावां दे रहे कर्नल की पत्नी है।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सह जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: हेलो,
2: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
3: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला 1 मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेशा प्रोग्राम महक पंजाब दे, आओ सुनते हैं। इस विच सब तो पहला शमशाद बेगम नू, फिल्म है 2 लच्छियां।

डाकू जगत सिंह तो इस फिल्म का ही गीत सुन रही सी। लाडली सुनते हैं इस फिल्म का गीत आशा भोसले मोहम्मद रफी तक आया।

असा टुर न पराए अज मुलके, असा टुर न पराए अज मुलके, नी गंगी या बदामी रंगी ए, नी रोका पावी ना रिजक टुकरा में ना मैं सोने।

मोहब्बत का यही असर है, बस तेरे कदमों में दिल आया है तो ये दिल ऐसे ही रहेगा। सो गल कर रहे हैं गीतकार प्रेम धवन और अनिता ने बहुत सारे फिल्मों में गीतकार के तौर पर काम किया, जिन्हें विच की गीत पवित्र पापी, मेरा नाम जोकर, एक फूल दो माली, 10 लाख, आधी रात के बाद, शबनम, माँ बेटा, काबली वाला, जबक, तेल मालिश, बूट पॉलिश, शोला और शबनम, गेस्ट हाउस, हीरा मोती, जागते रहो, वचन, इस अलावा कोई और फिल्म। और इन्होंने कुछ फिल्म ले गीत लिखे, शुरू तो 1946 तो जो सफ़र शुरू है सितारा दली, कुछ फिल्म ले गीत लिखे जिन्हें बिच फिल्म सन आसमान, तराना, आराम ते जीत। गीतकार प्रेम धवन होरां ने हर सिचुएशन लिए गीत लिखे, चाहे फिल्म वाले रोमांटिक होवे, प्यार होवे, सास होवे, जज्बात होवे, चाहे गल होए देश भगती दी।

बिक जाए पगड़ी मेरी, चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट

से गूंज उठी शहनाई। एस लावर ने तकरीबन 7 फिल्मों लिए कोरियोग्राफर वजो भी काम किया और वचन कोरियोग्राफर ते गीतकार वजो उन्हों की पहली फिल्म रही सी। और इस तरह खास करके प्रेम धवन होर जाने जाता है देश भगती वाले गीतों भी, जो उन्होंने 1965 मनोज कुमार की फिल्म शहीद के बोल लिखे सन तो इन रचनावां लिए उन्होंने मिले से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ਉੱਨੀ ਸੌ ਇਕਹੱਤਰ ਸਰਵੋਤਮ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਅਤੇ 1970 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੌਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

सो प्यार होवे तकरार होवे, है ना, और तकरार आज भी जारी है, शायद हमेशा ही जारी रहेगी। तो ऐसी गल करें आज संगीतकार, गीतकार, कोरियोग्राफर, अदाकार प्रेम धवन होर दी, जो कि एक वर्सटाइल तौर पर एक जाने जाते ने अपनी इस बॉलीवुड इंडस्ट्री विच, और जिमें कि 1971 सर्वोत्तम गीत लिए उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलिया। और इसी तरह उन्होंने जिमें आप गल की कि भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्म श्री नाल सम्मानित किया गया। प्रेम धवन होर का जन्म 13 जून 1923 अंबाला विखे मौजूदा हरियाणा राज विच होया सी, ते इन्हें इस फानी दुनिया नूं अलविदा किया 7 मई 2001 नूं। पर जिमें कि कलाकार की गल करिए, कलाकार दियां यादां हमेशा ही मन विच रहिंदियां ने, और खास तौर पर जो साड़ी फिल्म इंडस्ट्री विच ऐसे गीतकार, संगीतकार, कोरियोग्राफर, बहुत सारे कलाकार होए ने जिन्हां दी याद एक याद नाल साड़े रूप विच हमेशा रहिंदी है और रहेगी।

एसी प्रोग्राम एक फनकार, गल करे से असी एच गीतकार, संगीतकार, कोरियोग्राफर, अदाकार प्रेम धवन होर दी। ते हुण आकाशवाणी जलंधर तो पेश कर रहे हैं एनसीईआरटी द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: कोमल वचन और विनम्र व्यवहार ही मनुष्य को महान बनाते हैं।
0: इस सुंदर विचार के लिए हम उमंग कार्यक्रम की ओर से आपका आभार प्रकट करते हैं। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश।
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।
0: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
0: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है श्रोताओं आप सबका बहुत बहुत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके अद्भुत और रहस्यमय संसार की।
0: जी,
2: भारतीय शास्त्रों में समुद्र को अनंत ज्ञान का प्रतीक और जीवनदाता माना गया है। गीता, रामायण, पुराणों और वेदों में भी इसे विशेष महत्व दिया गया है। समुद्र मंथन की घटना से हम सब परिचित तो हैं ही, तो अजीत जी, आज हम समुद्र की किस विशेषता पर चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, अभी अभी आपने कहा समुद्र को शास्त्रों में जीवनदाता कहा गया है।
2: जी,
0: है ना?
2: बिल्कुल।
0: आज हम चर्चा करेंगे कि इसे जीवनदाता कहने का कारण क्या है। तो चलिए आपसे करते हैं शुरुआत।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है, वरना हम समुद्र के महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। यदि पूछा जाए कि हमें जीने के लिए प्राणवायु या ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो सबका उत्तर होगा पेड़ पौधों से। ये ठीक है, लेकिन सच ये है कि समुद्र लगभग 60-70% तक ऑक्सीजन पैदा करता है।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। जी हाँ श्रोताओ, यदि प्रतिशत को मान लें तो कहा जा सकता है कि समुद्र पेड़ पौधों से भी अधिक ऑक्सीजन पैदा करता है, जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए तो इसे जीवनदाता भी कहा जाता है।
2: अजीत जी, मैंने पढ़ा है कि समुद्रों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे सांस लेने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि समुद्र ऑक्सीजन कैसे पैदा करता है।
0: जी विमलेश जी, समुद्र में फाइटोप्लैंकटन होते हैं। जरा श्रोताओं को जानकारी तो दे दें कि फाइटोप्लैंकटन होते क्या हैं?
2: श्रोताओं, फाइटोप्लैंकटन दरअसल बहुत ही सूक्ष्म और छोटे छोटे पौधे होते हैं जो समुद्र के जल में तैरते रहते हैं। इनमें बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वे सूर्य की गर्मी से फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
0: जी, एक रोचक बात और जान लेते हैं। फाइटोप्लैंकटन नाम ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द से आया है।
2: जी,
0: फाइटो का अर्थ है पौधा और प्लैंकटन का अर्थ है भटकने वाला या तैरने वाला।
2: जी,
0: ये पौधे समुद्र में यहाँ वहाँ तैरते रहते हैं।
2: जी हाँ श्रोताओं, इनकी संख्या अरबों खरबों में है। ये धरती के सबसे पुराने ऑक्सीजन उत्पादकों में से एक हैं। अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक और प्रश्न मेरे मन में है। वो ये है कि इनके द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन हवा में कैसे आती है, यानी हमें कैसे मिलती है?
0: जी देखिए, समुद्र में बनी ऑक्सीजन दो तरह से फैलती है। तो पहली बात है, ये ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है। इसी ऑक्सीजन से मछलियां और सारे समुद्री जीव सांस लेते हैं। लेकिन दूसरी एक और बात है।
2: दूसरी बात है, इनके द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन लहरों और हवा के संपर्क में आकर हमारे पर्यावरण में पहुंचती है।
0: जी, और इतना ही नहीं, समुद्री शैवाल भी बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करते हैं।
2: लेकिन अब एक खतरा है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रोताओं, एक बहुत गंभीर बात आपको बता दें, समुद्रों में हर दिन हजारों टन प्लास्टिक और

0: खानों का कचरा नदियों द्वारा लाया जाता है। समुद्री तटों पर पर्यटक भी कचरा फेंक देते हैं। शहरों का कचरा जहाज़ों द्वारा समुद्रों में लाकर फेंक दिया जाता है।
1: और श्रोताओं, इससे होता यह है कि समुद्री जीवों के जीवन पर संकट आता है
0: जी,
1: और समुद्र द्वारा ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता भी प्रभावित होती है।
0: श्रोताओं, क्या आपको पता है कि समुद्रों में कुछ जगहों पर प्लास्टिक इकट्ठा होकर बड़े बड़े ढेर बना लेता है, जिसे प्लास्टिक या गार्बेज आइलैंड कहते हैं। ये तैरते हुए कचरों के द्वीप हैं। तो आइए अपने जीवनदाता समुद्र का सम्मान करें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और कचरा इधर उधर न फेंकें। शास्त्रों में समुद्र को देवता भी माना जाता है।
1: श्रोताओं, समुद्र का विश्व सभ्यता में बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया का 80% व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। यह जलवायु, ऋतुओं और पर्यावरण को भी नियंत्रित करता है। ऐसा भी कहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति भी समुद्र से ही हुई है।
0: जी,
1: आइए आज अपने जीवनदाता समुद्र को धन्यवाद दें, हम उसकी रक्षा करें।
0: तो समाप्त करते हैं आज की चर्चा। श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: आज का प्रश्न है, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कोई दो कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कोई दो कारण बताइए।
1: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, माला की चांदी की पायल।
1: इस कार्यक्रम में एक प्यारी सी बच्ची के बारे में बताया गया है, जिसे पायल पहनकर घर में घूमना बहुत अच्छा लगता है। वो पायल पहनकर घूमती है और बहुत सी मजेदार गतिविधियां भी करती है। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित सुंदर नाट्य प्रस्तुति है, माला की चांदी की पायल।
2: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
3: अरे माला तू।
2: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
4: बहन जी, डाकिया।
2: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की मां ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
5: माला, यह तुम्हारे लिए है।
2: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते।

0: छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते, उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की होश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेस से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की थप्प से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती, तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
1: तो बच्चों, अभी आपने सुनी डराने की अलग अलग अभिव्यक्तियां। अब आपके सोचने के लिए कुछ बातें। विभिन्न भावों की अलग अलग अभिव्यक्ति होती है, जैसे हंसने की, रोने की इत्यादि। तो आप भी अपने मित्रों के साथ प्रयास करके देखिए कि आप कितने प्रकार से हंस सकते हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर और ममता मलकानी, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
2: और अब सुनते हैं भारतीय शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत की श्रृंखला राग रस बरसे का एक और कार्यक्रम। शीर्षक है राग गौड़ मल्हार।
1: इस कार्यक्रम में राग गौड़ मल्हार के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है और विशेष रूप से बताया गया है कि इसे कब गाया जाता है, इसकी स्वर मालिका क्या है और इसमें कौन कौन से कोमल और तीव्र स्वर लगते हैं।

राग गौड़ मल्हार। राग गौड़ मल्हार की उत्पत्ति खमाज थाट से हुई है। इस राग में दोनों निषाद अर्थात कोमल नि और शुद्ध नि प्रयोग किए जाते हैं तथा अन्य सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसके आरोह और अवरोह में सात सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर मध्यम यानी म है, संवादी स्वर षडज यानी स है। इस राग का गायन समय रात्रि का

द्वितीय प्रहर है एवं ये वर्षा ऋतु में विशेष रूप से गाया जाता है। राग गौड़ मल्हार के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

अब प्रस्तुत है राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने सुनी राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका। अब इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना सुनिए। बोल हैं उमड़ घुमड़ कर आते बादल। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई

अभी आपने सुनी राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका, साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना।

0: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
1: आशा है श्रोताओं कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा।
2: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं चल चलूं।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।
2: इस कार्यक्रम में सच्ची मित्रता के बारे में बताते हुए ये संदेश दिया गया है कि मित्र वही है जो जरूरत के समय काम आए और हर संभव सहायता करे। ये कार्यक्रम एक लोक कथा पर आधारित है।

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा,
2: 5-7 रुपए? तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो?
0: बालक बोला,
1: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

0: पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया। फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए। बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी। वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की

0: जी, अभी आपने सुना कार्यक्रम साथी की सहायता।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: एसी स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 10 बजे ने पेश ने मुख खबरां। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अज अपने मंत्री मंडल का विस्तार करनगे। केरलम के नवे चुने गए कांग्रेसी विधायक अज तिरुवनंतपुरम विच अपने नेता की चोण करनगे। पछमी बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले विच बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के सहयोगी की गोली मार के हत्या। अज देश पहलगाम दहशतगर्दी हमले के जवाब विच शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वरेगंठ मना रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वरेगंठ मौके भारतीय हथियारबंद सेनावां की बहादुरी ते कुर्बानी नू नमन किया। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है सरकार किसानां अते ब्रह्मतकारां दीआं सारे समस्यावां नू हल करन लई वचनबद्ध। मौसम विभाग ने अज पंजाब विच कुछ थावां ते तेज हवावां ते गरज चमक बारे येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टैनिस चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी करेगा। आईपीएल क्रिकेट विच सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स नूं 33 दौड़ां नाल हराया।

0: प्रोग्राम है। हेलो फरमाइश। हेलो,
1: मैडम जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हो?
1: चकला बाजार समाना शहर जिला पटियाला पंजाब तो पप्पू राजा खुशदिल जी।
0: हाँ जी, की हाल चाल है पप्पू राजा जी?
1: मैडम जी बहुत बढ़िया प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, सानू बहुत चंगा लगता है जी।
0: चलो बहुत बहुत धन्यवाद। गीत दस हूँ लगते हाथ, केड़ा सुनना चाहते हो?
1: मैडम जी मेरी बहुत सुंदर पत्नी है संगीता रानी जिंदल चकला बाजार समाना तो गाना बॉबी फिल्म का कोई भी सुनवा दो, असीं तुहाडा आकाशवाणी जलंधर का पूरा स्वागत करते हैं जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने लई। सो तुसी भी सानू नंबर मिला सकते हो, साडा नंबर है 2342-173, एरिया कोड है जलंधर का 0181 यानी 0181-2342-173।

0: प्रोग्राम है हेलो फरमाइश, देखते हैं कौन जुड़े ने। हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोलते हो?
1: सुखबीर सिंह छाजरी बोलना मैम सुखबीर को।
0: हाँ जी, की हाल चाल है सुखबीर जी?
1: हाल चाल वधिया नहीं फिर टैन फाइन तुसी दसो ठीक हो जी।
0: बहुत वधिया जी, गीत दस केड़ा सुनना चाहते हो?
1: जलंधर नाल तां साडे हाल चाल वधिया रहिंदे नहीं, साडा फेवरेट चैनल आ जी इह।
0: चलो चंगी गल है,
1: हाँ जी हाँ
0: ठीक है
1: जान है
0: सर।
1: साडी मतलब के जलंधर। हाँ जी
0: चलो धन्यवाद, ते गीत
1: हाँ
0: दस्ते
1: जी।
0: हो केड़ा सुनना चाहते हो?
1: सुबह से लेकर शाम तक मुझे प्यार करो
0: फिल्म है मोहरा,
1: एक। हाँ जी हाँ
0: है
1: एक
0: ना?
1: गाना गाओ। हाँ
0: ठीक
1: जी
0: है
1: हाँ
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने ली। सो तुसी भी सानू कॉल कर सकते हो, साडा नंबर है 2342173।

0: प्रोग्राम में हेलो फरमाइश देख दिया। कौन जुड़े ने? हेलो,
1: हेलो, सत श्री अकाल मैडम जी।
0: सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, कौन बोलदे हो?
1: मैं परमजीत बोलदा जी, मोगा जिला तो, तहसील बागा पुराना पिंड लंगियाणा जी।
0: हाँ जी, की हाल चाल है परमजीत जी?
1: ठीक है जी, तुसीं दस्सो जी।
0: गीत दस दिओ।
1: गीत अपना जी, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं,
0: हीरो फिल्म दा है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लई। तुसीं भी सानूं नंबर मिला सकते हो, साडा नंबर है 2342173, यानी 2342173, एरिया कोड जलंधर 01, यानी 0181।

0: प्रोग्राम है हेलो फरमाइश। हेलो
1: मैडम जी,
0: नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हो?
1: मैडम जी मैं बोला सराबा नगर जलंधर तो जी।
0: हाँ जी, नाम तो होएगा अपना।
1: मैं क्या जी, पॉल बोलदा सराबा नगर जलंधर तो
0: अच्छा
1: जी।
0: अच्छा हाँ जी, पाल जी की हाल चाल ने?
1: हाँ बहुत बढ़िया मैडम, बहुत दिन बाद तुहाडे नाल गल होई, मेरे ख्याल 3-4 महीने हो गए तुहाडे नाल गल होई।
0: चलो कोई गल नहीं, हो तो गई ना।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ
0: हाँ,
1: जी
0: गीत दस दे हुण।
1: गीत मैडम सुना दियो तुसी। फिल्म का नाम है रानी रूपमती और गीत दे बोल आ लौट के आ जा मेरे मीत।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लिए।
1: मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद जी।
0: जी।

0: सारे लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: हुण तक 8,85,00,000 तो वध लाभपात्री इस योजना नाल जुड़ चुके हैं। जेकर तुहाडी उम्र भी 18 to 40 साल दे विचकार है तां महीनावार अटल पेंशन समेत योजना दे 3 गारंटी शुदा लाभां बारे जानकारी लई अपनी बैंक शाखा नाल संपर्क करो।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
3: प्रोग्राम है हेलो फरमाइश ब्रेक तो बाद हाजिर है, देखते हैं कौन जुड़े ने। हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, कौन बोल रहे हो?
4: मैं जगतार सिंह गिल जी, पिंड भंगाला, जिला फाजिलका, तहसील अबोर तो बोल रहा मैम।
3: हाँ जी, की हाल चाल ने जगतार जी?
4: बहुत वधिया मैम, वाहिगुरु की कृपा जी।
3: बस कृपा बनी रहनी चाहिए, गीत दस दो।
4: गीत जी फिल्म एक दूजे के लिए जी। गीत रहेगा जी, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए जी।
3: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लई। ठीक है, सुना दे गीत। सो तुसी भी सानू कॉल कर सकते हो, साडा नंबर असी वार वार दसते हैं कि जेड़े साडे नवे दोस्त ने, नवे जेड़े सुन रहे ने इस प्रोग्राम नू, वो सानू फोन कर सकन 2342173 यानी 2342173 एरिया कोड है जलंधर का 0181 यानी 0181। प्रोग्राम हेलो फरमाइश।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: हाँ जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैं जी मेन बाजार मंडी लादू का जिला फाजिलका तो वरिंदर कुमार कारड़ा बोल रहे हैं जी।
0: हाँ जी, की हाल चाल है वरिंदर जी?
1: बहुत ही वधिया जी मैडम जी।
0: बस वधिया है, ते फिर वधिया जे गीत दस दे।
1: गाना तो है पिक्चर है दिल, इनका कोई भी सॉन्ग सुना दो, गाने बहुत ही अच्छे ने,
0: ठीक है,
1: ते
0: बहुत बहुत
1: प्रोग्राम
0: शुक्रिया
1: बहुत वधिया चल रहा है जी।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लई।
1: थैंक यू जी।

0: प्रोग्राम है हेलो फरमाइश। हेलो,
1: हेलो सब।
0: हाँ
1: नमस्कार
0: जी,
1: भाई, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। कौन बोल रहे हो?
1: जी मैं भोला सिंह सिद्धू पिंड बड़ेखड़ा नेड़े मंडी डब्बाली तो बोलदा जी। साडी सुखजीत मैडम ताई भी सत श्री अकाल पहुंचा दिओ जी, बहुत याद करदे हां जी।
0: गीत दसो, केड़ा सुनना है?
1: गीत सुना दिओ जी, अंदाज फिल्म दा।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लई।
2: जिंदगी एक सब...

0: एसी प्रोग्राम हल फरमाइश दिल करदा बहुत सारिया कॉल्स लिए पर समा खत्म है। मिलांगे कल 11 बज रहे ने, सुन रहे हैं समाचार हिंदी विच।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। इन हमलों में 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब था।
2: इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आतंकवाद और उसको समर्थन देने वालों को समाप्त करने के अपने संकल्प पर अडिग है। ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने इस ऑपरेशन के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को सम्मान देने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं की सफलता और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशवासियों से भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि देश के खिलाफ आतंकवाद के हर स्वरूप का मुकाबला डटकर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह दिन हमारे दुश्मनों को ये संदेश देता है कि वे दुनिया में कहीं भी छिपे हों, वे हमसे बच नहीं सकते। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई ने सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी केरलम में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। राज्यपाल के चेन्नई से तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लिकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है, वे इस समय चेन्नई में हैं। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 14 बिंदुओं वाला ये मसौदा 30 दिन की बातचीत का रास्ता खोल सकता है,

0: ताकि एक व्यापक समझौते तक पहुंचा जा सके। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: माने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

प्रोग्राम चल रहा जी तमक जलंधर पैंती और ये प्रोग्राम तुसी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो सुन रहे हो। तमक जलंधर पैंती प्रोग्राम दे विच तमका पान पहुँच चुके ने जी, केड़े केड़े स्रोते पहुँचे ने। पदमपुर तो भगवान दास तनेजा, पवन कुमार, योगेश तनेजा, आस्था तनेजा, मोहित मक्कड़ ते मुखी राम जी, मनजीत तनेजा ते पूजा। और अगले सुनेहे नाल पहुँचे ने जी रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो लालगिरी गौस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित ते खुशी गौस्वामी, करनैल सिंह बट्टू, गुरफतेह सिंह, हरनीज कौर, मुहब्बत नगर कपूरथला तो। लो जी, वो इदा दे नगर च रहिंदे ने जिथे मुहब्बत ही मुहब्बत है, क्या ही बातें ने, बड़े ही सोहना नगर है जी तुहाडा। अगले सुनेहे नाल पहुंचे ने जी सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टी डी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका तो शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज ते बिट्टा बजाज। पिंड कुणियाणा जिला फाजिलका तो हाजिर ने जी, सत श्री अकाल भेज रहे ने सरदार मलकीत सिंह कुणियाणा, मनजीत कौर बठिंडा, दपिंदर सिंह चेयरमैन, पोता गुरशबद सिंह, जीत सिंह कुणियाणा, सारा ही बराड़ परिवार, कुलवंत गिल मलोट ये भी हाजिर हो गए ने जी। पिंड बनवाला हनवंता फाजिलका तो विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यसिका, माता विद्या देवी ते सारा ही मायल परिवार आकाशवाणी जलंधर च हाजिर। सैक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा तो विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी पलोमा ते डॉक्टर ईशानी ये भी पहुँच गए ने। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक अनारकली बाजार जगराओं तो हाजिर हो चुके ने जी। जिला पोंगिर तो मोहम्मद बुराहुद्दीन, फजान, फरहान, समायरा आजमीन ते गुड़िया ये भी पहुंचे ने। वड़िंगखेड़ा पंजाब तो मिंटू टोमस, पिंकी लवली ते आरती अरोड़ा भी हाजिर ने। और नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र तो पी एस नहावकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर तो नारायण इंगले, मंगला इंगले, आशीष मोहेरकर ये भी पहुंच गए। लो जी, बाघा पुराणा वाले भी कदी पिछे नहीं रहिंदे, ये भी पहुँच जाते ने। सतनाम सिंह रखरा, अमरजीत कौर पोतरा, इन्हों का तेग फतेह सिंह रखरा, पोतरी जसगुन रखरा, बहुत बहुत शुक्रिया जी तुहाडा। और अगली फरमाइश नाल हाजिर ने जी रिंगनी छत्तीसगढ़ तो दिनेश वर्मा ते करुणा वर्मा, और जॉन टेकिस्ट, रोजी पर्ल ते विलिस, जनकपुरी सहारनपुर तो पहुँचे ने जी। मोहाली तो हाजिर ने अमरदीप सिंह सैणी, लाभ कौर, जीवन ज्योत कौर, सैवी कौर ते नीदिस सैणी कनेडा तो भी। कनेडा ते इंडिया कट्ठा ही पहुंच जांदा साढ़े कोल, ते दिल ते बाग बाग होएगा ही, है ना। दतरेंगी तो पहुंचे ने जी भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा ते रुद्र वर्मा, करणवीर सिंह पॉल सारे ही अपने पॉल परिवार दे नाल पहुँच गए ने जी सराभा नगर जलंधर तो। और अगले मैसेज दे नाल पहुँचे ने पिंड शाहपुर मेहतपुर तो अनाहित कौर, लवप्रीत कौर भी। ये मैसेज मैं पहला भी पढ़ चुकी हाँ, तुसी इक्को वारी मैसेज पाया करो, बार बार सोना नहीं लगता। चलो हुन मैं पढ़ दिनी हाँ। वैसे लवप्रीत कौर, परविंदर कौर, हरप्रीत कौर, गगन सिंह, बूटा सिंह, विजयपाल सिंह, अजयपाल सिंह ते पाहुलजोत सिंह, क्योंकि ये तुहाडा प्रोग्राम है, बार बार करोगे सोहना नहीं लगेगा, एक बारी मैसेज कर दोगे असी पढ़ ही लवांगे। और अगले सुनेहे नाल हाजिर ने जी पिंड बांडीवाला फाजिलका पंजाब तो क्रियांश बगड़िया, योगेश, ओम बगड़िया, बेबी गरिमा, रजत ते मनीष चौधरी ये भी पहुँच गए। और अगले सुनेहे नाल पहुँचे ने जी पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कलोनी सनावत तो मुहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। लड़ीवार नाटक।

0: 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब था। एक रिपोर्ट।
1: इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आतंकवाद और उसको समर्थन देने वालों को समाप्त करने के अपने संकल्प पर अडिग है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये 2 दिवसीय सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। ये पहल व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और देश के कार्यबल के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे सब कभी तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे नहीं झुके। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी केरलम में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है, वे इस समय चेन्नई में हैं। प्रवर्तन निदेशालय पंजाब के मोहाली और चंडीगढ़ में 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये कार्रवाई ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण GMADA से भूमि उपयोग परिवर्तन लाइसेंस प्राप्त करने में हुई धोखाधड़ी और जनता से करोड़ों रुपए की ठगी के सिलसिले में की जा रही है। निदेशालय नितिन गोहल की तलाश कर रही है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए गए अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। सऊदी अरब ने इस अभियान में शामिल अमेरिकी विमानों को अनुमति नहीं दी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है परिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: नमस्कार।
1: प्रोग्राम वास्ते वेड़े लैके मैं सिमरन ते मेरे नाल
0: मैं प्रभजोत हाजिर हाँ जी।
1: जी प्रभजोत जी की गल दसा, अज ना मैं भजी भजी आ रही।
0: ओहो क्यों?
1: तुम कहो की हो गया? मोबाइल हाथ से तो बस एवं बैठी वो उंगला मारी जाई दिया ने ना।
0: हाँ जी
1: लेट हो गई,
0: ओहो
1: टाइम ही इन्ना बर्बाद कर लिया अपना।
0: अच्छा।
1: अज ये एहसास होया कि ये तो टाइम खाई जा रहा है, तो जिंदगी खाई जा रहा है सोशल
0: बिल्कुल,
1: मीडिया।
0: बिल्कुल जी, सोशल मीडिया वाकई जिंदगी खाई जा रहा है। और लगता है इदा है कि असी पता नहीं की कुछ खो देवे जे असी ये रीलां ना देखियां तां।
1: सही आख्या तुसी, बस ऐसे चक्कर च आ भी खबर पता लग जाए, आ भी पता लग जाए, कोई जगह थां टिकाणा मेरा ख्याल ते कोई सेलिब्रिटी, हर कोई वैसे तो सोशल मीडिया ते सेलिब्रिटी बनन दी चाह च है, है ना।
0: पर सिमरन जी इदा नहीं लगता कि असी सारा कुछ पा के अपनी जिहड़ी प्राइवेट लाइफ है वह भी लोगों नूं दिखाई जा रहे हैं? तुहाडा की ख्याल है?
1: ये गल सोला ने सचा, पता नहीं बे, मैनू तो सोशल मीडिया ते कोई सेलिब्रिटी शब्द का मतलब ही नहीं। जेड़ा सोशल मीडिया ते है ओ ही सेलिब्रिटी है।
0: जी जी
1: अजकल एक लाइक्स व्यूज क्लिक बस इन्ना चीज़ा ने अद्धी दुनिया ते भंबल भूसे च पाई है।
0: बिल्कुल जी। और देखो असी किन्ना कुछ जी, चाहे वह साडा गुस्सा है, चाहे वह साडी खुशी है, चाहे असी कितें बाहर घूमन जा रहे हैं, उत्थे मैनूं लगदा हुंदा कि जदों असी सारा कुछ सोशल मीडिया ते पा दिंदे आ ना कितें नुकसान जिहड़ा वह साडा हुंदा है। जिवें कि असी घूमन जा रहे हैं, जे असी वह सारा कुछ शो करता कि असी ये थां ते घूमन जा रहे हैं, साडे घर पिछे कोई नहीं है, जे साडे घर बजुर्ग ही हैं कल्ले, तां फिर कितें ना कितें तुहानूं समस्या जिहड़ी है वह खड़ी हो सकती है। की ख्याल है?
1: ये गल बहुत ज़्यादा सोचण वाली
0: जी
1: है। तुसी ते बहुत ही ज़्यादा वो कह दिता भी ध्यान रखण दी लोड़ है तुहानू कि कुछ एक चीज़ां दी प्राइवेसी जेड़ी है वो क्राइम तों चोरी तों तुहाडी प्राइवेसी तुहानू बचा सकदी
0: जी
1: है।
0: जी जी और इन्ना कुछ असी सोशल मीडिया ते पाई जा रहे हैं, जिवें कि गुस्सा ही लै लो,
1: जी
0: बच्चे जड़े ने वो अपनी जड़ा गुस्सा है वो सारा कुछ ओदे ते पा देंदे ने।
1: आ हुण प्रभजोत जी आ जिहड़ा रीसेंटली बड़ा वायरल हो लिया, एक कुड़ी दूजी कुड़ी नूं चपेड़ा मारी जा रही।
0: हाँ।
1: अच्छा कोई घर नहीं कोई बाहर नहीं, एड्डी वड्डी यूनिवर्सिटी दे विच अखे रैगिंग हो रही।
0: जी
1: रैगिंग ते बैन है
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल, इत्ते ते कानूनी तौर ते कुछ भी तुसी देखो एक्शन लिया जा सकता। अच्छा फिर वो लड़की नूं कहिंदे कढ दित्ता, उहने फिर वायरल कीता, मैनूं अखे कढ दित्ता यूनिवर्सिटी ने।
0: किन्नियां गलत गल्लां जिहड़ियां ने उह सोशल मीडिया ते जा रहियां ने। देखो जी असीं ते सारिआं नूं इह ही कहिणा चाहवांगे कि अपनी प्राइवेट लाइफ ते पब्लिक लाइफ नूं बिल्कुल अलग अलग रखो, बिल्कुल भी अपनी प्राइवेट लाइफ नूं जिहड़ी है सोशल मीडिया ते शो ही ना करो।
1: ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ
0: ਹਾਂ
1: ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਬਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ।
0: ਜੀ
1: ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਬੁਰਕੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲ ਚਾਹ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ,
0: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ।
0: ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੋ।
1: ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ,
0: ਜੀ
1: ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਫਸੋਸੀ ਮਹਿਸੋਸੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਈਏ ਇੱਕ ਗੀਤ।
0: ਹਾਂ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੁਣੀਏ ਫਿਰ ਗੀਤ।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: हेलो,
2: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
3: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला

0: एक मिनट लिए रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
1: हाँ जी, फिर सरबजीत दा लोक गीत सुनिया ते उस तो बाद असी ब्रेक भी ले ली ते फिर अपना प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ
2: वापस आए हैं जी। ते हुण वेला है कथा लोक दा।
1: बिल्कुल जी, नाटक अंदाज दे विच असी कहानी पेश करदे हुंने आ ते अज कीड़ी कहानी है सिमरन?
2: हीरो हीरोइन।
1: चलो जी फिर सुनिए
2: जी।

0: सीरियस पेशेंट आ गया है तो उसे ऑपरेशन करना है, इसलिए जरा देर भी हो सकती है। फिर मैं मन ही मन सोचता कि असी दोवें इकल्ले बैठांगे। मन बनाया कि सिनमे दे मालक तो हस्पताल आन जान करके अपनी पूरी सेवा करते ने, टिकट दे कदे पैसे भी नहीं लेंदे, ते वैसे भी जा पानी पूछ लेंदे ने। टेलीफोन करके पहला ही सिनमे दे मालक नू बॉक्स रिजर्व करने लिए कह देना। हेलो हेलो, जी हाँ, मैं डॉक्टर आनंद बोल रहा हूँ, मैनेजर साहब है।
1: हे गुड आफ्टरनून मैनेजर साहब, क्या हाल है?
0: हाँ ठीक है। अच्छा इस तरह है कि आज मैं तो मेरा एक कुलीग फिल्म देखने आ रहे हैं, प्लीज एक बॉक्स अरेंज हो सकता
1: है? हाँ कुलीग
0: नहीं नहीं सीरियस मामला है यार, सच्ची आ रहे हैं? हाँ हाँ पक्का। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ओके। बॉक्स विच ठीक रहेगा। जदों कोई हीरो हीरोइन का अजिहा रोमांटिक सीन आया तो मैं मलक जय किरण नूं इस तरह के ख्यालों नाल मैनू रात को नींद भी ना आई। कदे कदे मैं सोच के चौंक उठता कि जे किरण ने इस तरह करन नाल बुरा महसूस किया तो कित शटअप कह के तोरी ना जावे। तो फिर मेरा मन आखता उसने आप ही तो बुलाया है। नहीं नहीं वो इस तरह नहीं कर सकती। सवेर हुई, हस्पताल गया, हस्पताल एक बजे बंद होना सी, वक्त अज खलो गया सी, मसा मसा एक बजा। घर आने तो पहला मैं एक बार फिर किरण तो पक्की तरह पूछ लिया, किरण अज का प्रोग्राम पक्का है ना?
2: क्यों की गल डॉक्टर साहब, तुसी कई बार मैं तो पूछ चुके हो।
0: नहीं बस वैसे ही, मैंने पूरी तसल्ली होगी। पर फिर मैं पूछा, हाँ सच आप मिलेंगे कितने?
2: देख लो जिथे तुसी कहो, मैं सोचती हाँ डॉक्टर साहब मैं थोड़े घर ही आ जावांगी।
0: हाँ ठीक है, मेरे मुंह अब मुहारे निकल गया, पर मैं झट सोचा कि कारण ते मेरी पत्नी शक ना करेगी। फिर मन नूं तरवास दित्ती कि कोई गल नहीं, लेडी डॉक्टर है, इसलिए श्रीमती नूं की वहम हो सकता है। ढाई बज के उड़ीक होर वधन लगी, उड़ीक विच वक्त होर भी लंबा हो जाता है, ते पल घंटिया वांग लंघन विच नहीं आते। आखिर बड़ी बेसब्री नाल उड़ीक ते पल खत्म हुए ते पौने तीन बजे दरवाजे ते लगी, दरवाजा खटकिया। मैं जल्दी जल्दी ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलन गया, जदों दरवाजा खुलिया तो किरण ने अपने नज़दीकी रिश्तेदार नाल ड्राइंग रूम विच प्रवेश किया।
2: डॉक्टर साहब तुसी तैयार हो ना?
0: हाँ हाँ
2: आप हा। लेट तो नहीं हो रहे? मेरे ख्याल जल्दी चल जाना चाहिए, थोड़ी मिसेस तैयार है ना?
0: किरण दे लफ्ज मेरे दिल विच तीर वांग वजे, जिवें किसी ने आकाश विच उडरे नूं पुंजे सुट दिता होवे। किरण मैनू अफसोस है कि अज एक बड़ा अर्जेंट केस आ गया है। हाँ मैनू हुणे हुणे ऑपरेशन थिएटर जाना पै गया। मैं बसा जे आख सकिया ते निम्मो चो ना होके अंदर आण वड़े।

0: हाँ जी, फिर किधर लग गया लोकगीत।
1: बहुत ही कमाल दा भाई। तो नाटक तो बात है, आज छुट्टियां दी सीधी गल शुरू हो
0: जी
1: गई
0: जी जी
1: है।
0: वैसे हले गर्मी चल रही है, बच्चों ने छुट्टियां थोड़ी देर नाल होनी है क्योंकि
1: जी
0: मौसम अपनी करवट बदल लैंदा है, कदी गर्मी कदी सर्दी, है ना।
1: ये भी
0: ते गर्मी
1: चंगा।
0: सर्दी दे विच कुछ भी हो सकदा है, इस करके थोड़ा थोड़ा अपना ख्याल रख्या करो भाई सारे जाने।
1: सेहत बहुत जरूरी है अपने
0: जी
1: लिए, और ये जड़ी चकानी जी देंदी है ना कदी ठंड। हुण जिवें कल मीह पिया ते
0: जी
1: नाल ओले गड़े पै रहे, ते फिर गर्मी, सूरज ओना ही पूरा तपिया, इहदे नाल किते ना किते मौसम ओ आ गया कि पेपर चल रहे ने कॉलेजां दे
0: जी
1: विच, तुहाडे यूनिवर्सिटी च पेपर चल रहे बच्चियां दे, ते मौसम दे गड़बड़ी दे नाल तुहानूं सेहत तुहाडी खराब हो सकती है।
0: इस करके अपने खाण पीन का ख्याल भी पूरा रखना है, और ये साडा फर्ज बनता है खास करके मावां दा कि जिहड़े बच्चे यूनिवर्सिटियां दे विच हले पेपर दे रहे ने, ते क्योंकि पेपर भी कईयां दे दुपहरे हुंदे ना, ते
1: जी
0: इस करके उन्हां नूं खास करके ठंडा पानी, नींबू पानी जरूर पिला के भेजना।
1: हाँ, और एवें प्रेशर भी नहीं बनाई जाना कि
0: जी
1: पता नहीं किन्नी वड्डी गल आ पेपर देना, जिंदगी मौत दा सवाल है।
0: जी
1: देखो पेपर नालों सेहत ज़्यादा जरूरी है। ताज़ी सब्जी, मौसम दियां सब्जियां, चंगा खाना, पौष्टिक खुराक न्याणिया नूं खुआनी बहुत जरूरी
0: जी
1: है।
0: और जदों घर आ जाने ना बच्चे, चाहे वह वड्डे ने चाहे वह छोटे ने, उन्हां नूं प्यार दे नाल पुछना है बई अज किदां दा रहा, पेपर किदां दा होया। बहुत ज़्यादा प्रेशर जिहड़ा वह बच्चों ते नहीं पाना।
1: ये भी गल सही आखी है प्रभजोत जी, क्योंकि
0: जी
1: मावां ना पूरी चिंता ला के, बच्चों नालों ज्यादा चिंता ला के बैठिया होंदियां ने।
0: जी जी जी
1: इशारा हो गया।
0: बिल्कुल इशारा हो गया कि इस वादे दे नाल कि कल तुसी फिर मिलोगे। लेइए इजाजत, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵਜ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब था। एक रिपोर्ट।
2: इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवाद

0: खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने पटना के गांधी मैदान में नवनियुक्त मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसमें श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप कुमार जायसवाल, निशांत कुमार और लेसी सिंह सहित कई अन्य मंत्रियों ने शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो कर रहे हैं। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाश नाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था। कल भी विजय ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और पार्टी विधायकों की सूची तथा कांग्रेस का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया था। इस समय उन्हें बहुमत के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। वीसीके नेता थिरुमावलन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी। उनकी पार्टी के दो विधायक हैं। वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें। कांग्रेस पार्टी केरलम में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे कभी तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे नहीं झुके। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। ये पहल व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और देश के कार्यबल के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज मुंबई स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। राष्ट्रपति तो लाम आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग आधा प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 345 अंक बढ़कर 78,304 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।
2: दिस इज

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ तुहानू जानकारी दे दईए अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दे प्रसारण समय की।

फौजी वीरों, लोहुन सुनो, फूल और कांटे फिल्म चलिया गया गीत। आवाज़ आदित्या ने कुमार सानू ते अलका याग्निक ने, गीतकार ने समीर ते संगीतकार नदीम श्रवण।

0: आवाज़ा दितिया ने, अलका याग्निक ते हरिहरन ने, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ते संगीतकार जतिन ललित।
1: मम्मा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज़ हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ। गा गए फिर भी सपने जिंदा हैं, है ना ये नामुमकिन सपना।

0: ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.cybercrime.gov.in ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया

0: लखनऊ विच शामी 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु नाल होएगा। हुण खबरां विस्तार नाल। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी GMADA तो जमीन की वरतों च तब्दीली बारे लाइसेंस प्राप्त करने विच वड्डी पद्धर ते जालसाजी अते सैकड़े करोड़ इकट्ठे करने लई जनता नाल धोखाधड़ी दे संबंध विच पंजाब विच मोहाली ते चंडीगढ़ विच 12 थावां ते तलाशी लै रहा है। ईडी मुताबिक नितिन गोयल नाल जुड़ियां थावां ते तलाशी लई जा रही है क्योंकि वह कथित तौर पर उन्होंने बिल्डरां की मदद कर रहा है जिन्हां ने GMADA फीसां का भुगतान नहीं किया अते उन्होंने बिल्डरां लई सियासी सुरक्षा जुटा रहा है। वह पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष ड्यूटी के अधिकारी राजवीर घुम्मण का नज़दीकी साथी है। एजेंसी ने कहा कि नितिन गोयल ते पंजाब के मुख्यमंत्री दफ्तर वालों संपर्क अधिकारी वजों काम करने का शक है। देश अज ऑपरेशन सिंदूर की पहले वरीकंढ मना रहा है। पिछले साल 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया जिस विच पाकिस्तान ते पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर विच दहशतगर्दां ते 9 ठिकाणियां ते हवाई हमले किए गए। यह कार्रवाई पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम विच सैलानियों ते हुए पाकिस्तान की हमायत वाले बेरहम दहशतगर्द हमले का भारत का सख्त जवाब सी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ऑपरेशन सिंदूर भारत की फौजी और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन सी जिसनों फौजी और गैर फौजी साधना के सुमेल नाल अंजाम दिता गया। इस बहुपक्षी कार्रवाई ने दहशतगर्दी खतरियां नू प्रभावशाली ढंग नाल बेअसर किया, पाकिस्तानी हमले नू रोकिया और दहशतगर्दी प्रति भारत की बिल्कुल ना बर्दाश्त करने की नीति नू मजबूती नाल लागू किया। इस ऑपरेशन ने अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करते हुए रणनीतिक संजम बनाई रखा। इस कार्रवाई का उद्देश दहशतगर्दी करने वालियां और उन्होंने योजनाकारां नू सजा सरहद पार दहशतगर्दी बुनियादी ढांचे नूं तबाह करना सी। इस कार्रवाई दौरान भारतीय हथियारबंद बलों ने कई दहशतगर्द कैंपां ते सिखलाई स्थानां दी पछाण करके 9 वड्डे दहशतगर्द कैंपां नूं निस्तां नाबूद, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डियां ते हमले अते कई मुख दहशतगर्दां दा खात्मा कीता। हमले भयानक सन पर भारत ने हमलिया नूं नैतिक कदरां कीमतां ते संजम नाल अंजाम दिंदे होए सिर्फ दहशतगर्द टिकाणे नूं निशाना बनाया अते नागरिकां नूं कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अपने भारी नुकसान तों बाद पाकिस्तान नूं जंगबंदी दा सहारा लैण लई मजबूर होना पिया। ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी खिलाफ भारत दे दृढ़ संकल्प दी प्रमुख उदाहरण अते मुल्क दी विनाशकारी फौजी शक्ति दा प्रदर्शन है। ब्यूरो रिपोर्ट्स नाल आकाशवाणी खबरां लई जलंधर तों मैं राजेश बाली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर नूं दहशतगर्दां अते साडी प्रभुसत्ता ते नागरिकां दी सुरक्षा लई खतरा पैदा करन वालियां सारियां ताकतां विरुद्ध भारत दे अटल इरादे दा एक परिभाषित प्रमाण कहा है। ऑपरेशन सिंदूर दे 1 साल पूरा होण ते एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उन्हां कहा कि इस मिशन की असाधारण सफलता साडियां हथियारबंद फौजां दी बेमिसाल हिम्मत अते दृढ़ता नूं दर्शाउंदी है। राष्ट्रपति ने कहा कि पहलगाम विखे हुए बेरहम हमले का ढुकवां अते मिसाली सटीकता नाल सामना किया गया। उन्होंने दोहराया कि जो लोग भारत को धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने पता होना चाहिए कि साडा राष्ट्र चौकस एकजुट अते ताकत नाल जवाब देने लई तैयार है। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी कहा कि अज राष्ट्र साडे फौजियों की बहादुरी अते कुरबानी नू सलाम करता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर ते भारत की शांति ते एकता ते प्रभुसत्ता नूं भंग करन दी कोशिश करन वालियां दहशतगर्द ताकतां ते दहशतगर्दी दी हमायत करन वाले सरकारां नूं दृढ़ता नाल जवाब देण वाला कहा है। उपराष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा कि साडियां हथियारबंद फौजां दी हिम्मत अते बहादुरी ने इह यकीनी बनाया कि दहशतगर्दी नैटवर्कां नूं प्रभावशाली ढंग नाल निशाना बनाया गया ते उन्हां नूं तबाह कर दिता गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश दहशतगर्दां नूं हराउण अते दहशतगर्दी दे तंत्र नूं खत्म करन दे अपने इरादे ते अडोल है। ऑपरेशन सिंदूर दे 1 साल पूरे होण ते एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हथियारबंद बलों ने ऑपरेशन दौरान बेमिसाल हिम्मत सटीकता ते दृढ़ता दिखाई है। उन्होंने कहा कि फौजां ने पहलगाम विच मासूम भारतीयां ते हमला करन दी हिम्मत करन वालियां नूं ढुकवां जवाब दिता। श्री मोदी ने भी कहा कि पूरा देश हथियारबंद बलों नूं उन्हां दी बहादुरी लई सलाम करदा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी विरुद्ध भारत दे दृढ़ता नाल दित्ते जवाब ते राष्ट्रीय सुरक्षा दी राखी लई इस दी अटुट वचनबद्धता नूं दर्शाउंदा है। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIR RNU ਜਲੰਧਰ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ RNU-AIR ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ @AIR ਜਲੰਧਰ। बिहार विच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अज अपने मंत्रिमंडल का पसार किया है। मंत्रिमंडल विच कई आगुआ ने मंत्री वजों सहु चुकी। इन्हां विच भगवान सिंह कुशवाहा, अरुण शंकर

0: साथ मदन सानी, संतोष कुमार सुमन, रमा निषाद, राम कृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, दामोदर रावत, संजय सिंह ते अशोक चौधरी शामिल ने। पटना दे गांधी मैदान विच होए 100 चुक समागम विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा दे राष्ट्रीय प्रधान नितिन नवीन समेत कई सीनियर नेतावां ते कैबिनेट मैंबरां ने शिरकत कीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना विच एक रोड शो भी कीता, जिस दौरान रस्ते विच लोग वड्डी गिणती विच इकत्र होए। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने अज उपराज्यपाल के कैलाश नाथन नू अपना अस्तीफा सौंप दिता, जिस नाल इस केंद्र शासित प्रदेश विच नवी सरकार दे गठन दा राह पत्रा हो गया। मुख्यमंत्री ने राजनिवास विखे उपराज्यपाल नू निजी तौर ते अस्तीफा सौंपिया। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत ने एक विकसित राष्ट्र बनाने लई किसानों का विकास जरूरी है। उन्होंने कहा कि बरामद नूं वधाउण लई बागवानी खेतर दे सारे पहलुआं ते ध्यान केंद्रित करन ते समुची सरकारी पहुंच नाल काम करन लई टास्क फोर्स बनाई जाएगी। लखनऊ विच फ्रूट होराइजन 2026 दे उद्घाटनी सैशन नूं संबोधन करदिआं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत इस समय करीब 1,129 लाख मीट्रिक टन फल पैदा कर रहे हैं। हालांकि बरामद के मामले विच देश सिर्फ 14 लाख मीट्रिक टन के करीब फलों की बरामद करता है। उन्होंने कहा कि बरामद को बढ़ाने फलों के लंबे समय तक ताज़ा रहने यकीनी बनाना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने इस गल पर भी जोर दिया कि फलों के उत्पादन के नाल नाल सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने गुणवत्ता सुधार, प्रोसैसिंग और बरामद पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। किरत ते रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने अज नवे किरत साबते तहत 40 साल अते इस तों वध उमर दे वर्करां लई एक देशव्यापी सालाना सेहत जांच पहलकदमी शुरू कीती। इस पहलकदमी किते नाल जुड़ियां सेहत प्रणालियां नूं मजबूत करन वल एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत दे मुलाजमां लई व्यापक सेहत संभाल पहुंच नूं यकीनी बनाउंदी है। अज नवी दिल्ली दे मुलाजमां दे राज बीमा निगम जां ESIC मेडिकल कॉलेज दे हस्पताल विखे इस पहलकदमी की शुरुआत करते हुए किरत ते रोजगार मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ पिछले 12 साल विच देश के मुलाजमान और युवा शक्ति प्रति सरकार विच काफी वादा होया है। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार के मौके पैदा करने लई निरंतर यतन कर रही है ते नतीजे वजो बेरोजगारी दर घट के करीब 3.2% हो गई है। उन्होंने भी कहा कि सरकार ने ना सिर्फ नौकरियां प्रदान करन ते सगो मध्य वर्ग ते आर्थिक तौर ते कमजोर वर्गां लई समाजिक सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण ते भी ध्यान केंद्रित कीता है। IPL क्रिकेट विच अज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु नाल भारत रतन श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ विखे होएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होएगा। आखिर च खास खबरें एक बार फिर। ईडी वालों ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी तो जमीन की वरतों च तब्दीली बारे लाइसेंस संबंधी धोखाधड़ी के संबंध में पंजाब के मोहाली ते चंडीगढ़ विच 12 थावां ते छापेमारी की जा रही है। देश अज ऑपरेशन संदूर की पहली वरेगंढ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश दहशतगर्दा नूं हराउण अते दहशतगर्दी दे तंत्र नूं खत्म करन दे अपने इरादे ते अडोल है। बिहार विच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बागवानी खेतर ते वधेरे ध्यान केंद्रित करन लई एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी। IPL क्रिकेट विच अज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु नाल होएगा। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 ते होएगा। नमस्कार।
1: अब ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल मुकम्मल होने पर उसकी सताइश की है। उन्होंने दहशतगर्दी से निमटने और उसकी इयानत करने वाले इको निज़ाम को नीस्तो नाबूद करने के भारत के अज़्म का इयादा किया। तमिलनाडु और केरलम में हुकूमत तश्कील देने की खातिर बातचीत का सिलसिला जारी है। TVK के सरबराह जोसेफ विजय ने लोकभवन में गवर्नर से मुलाकात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ्त का हवाला देते हुए 48 घंटे से कम वक्त के बाद प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया है। रूस ने 9 मई को अगर यूक्रेन ने विक्ट्री डेट तकरीबात में रखना अंदाजे की कोशिश की तो कीव पर जवाबी हमलों की वार्निंग दी है। और IPL क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा।

0: मजीद कहा कि पार्टी दोबारा इंतखाब कराना या कोई आईनी बहरान नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नई हुकूमत की तश्कील की राह में नहीं आएगी। जनाब स्टालिन ने इन अफवाहों को मुस्तरद किया कि नई हुकूमत साजी के लिए डीएमके और एआईएडीएमके के दरमियान बातचीत चल रही है। पुदुचेरी के वजीर आला एन रंगासामी ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाशनाथन को अपना इस्तीफा सौंपा, जिससे मरकज के जेर इंतजाम इलाके में नई हुकूमत तश्कील देने की राह हमवार हो गई है। वजीर आला ने राजनिवास में लेफ्टिनेंट गवर्नर को जाती तौर पर इस्तीफा सौंपा। काबिले जिक्र है कि असेंबली इंतखाबात मुकम्मल होने के पेश नज़र कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुदुचेरी की 15वीं कानून साज असेंबली को तहलील किए जाने के अहकाम जारी किए थे। बिहार में वजीर आला सम्राट चौधरी ने आज अपनी हुकूमत में तौसी की है। मुख्तलिफ रहनुमाओं को काबीना में बतौर वुजरा हलफ दिलाया गया। इनमें भगवान सिंह कुशवाहा, अरुण शंकर प्रसाद, मदन साहनी, संतोष कुमार सुमन, रामकृपाल यादव, नितिन मिश्रा, दामोदर यादव, संजय सिंह और अशोक चौधरी शामिल हैं। पटना के गांधी मैदान में हलफ बरदारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन के अलावा मुख्तलिफ सीनियर रहनुमा और काबीना के मेंबर शामिल हुए। वजीर आजम मोदी ने पटना में एक रोड शो भी किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबर दी है कि आबनाए हुरमुज के रास्ते जहाजों को निकालने की खातिर मंसूबा बंद बहरी कार्रवाई को रोक दिया गया। सऊदी अरब की जानिब से इस मिशन में अमरीकी तैयारे के इस्तेमाल की इजाजत से इनकार के बाद ऐसा हुआ है। मकामी मीडिया की खबरों में कहा गया है कि सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक इतवार के रोज ट्रंप की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम के ऐलान से हैरान हो गए थे। खबरों में कहा गया है कि सदर ट्रंप ने सऊदी वलीअहद शहजादे मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, लेकिन वो मुआहिदा करने में नाकाम रहे। रूस ने खबरदार किया है कि अगर यूक्रेन ने मई की 9 तारीख को यौम फतह की तकरीबात में रखना डालने की कोशिश की तो कीफ पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। रूस की वजारत दिफा ने सिफारती मिशनों और बैन अल-अक़वामी तंजीमों को मशवरा दिया है कि वो एहतियात के तौर पर कीफ से अपने अमले और शहरियों को निकाल लें। यौम फतह रूस की सबसे ज्यादा अहम कौमी तातीलात में से एक है और ये दूसरी जंग अजीम में सोवियत यूनियन की कामयाबी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ईकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इससे कबल कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया था। सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को जीत के लिए 236 रन का निशाना दिया था, लेकिन वो 202 रन ही बना पाई। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का एक साल मुकम्मल होने पर उसकी सताइश की है। उन्होंने दहशतगर्दी से निमटने और उसकी इयानत करने वाले इको निज़ाम को नीस्तो नाबूद करने के भारत के अज़्म का इयादा किया। तमिलनाडु और केरलम में हुकूमत तश्कील देने की खातिर बातचीत का सिलसिला जारी है। टीवीके के सरबराह जोसेफ विजय ने लोकभवन में गवर्नर से मुलाकात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ्त का हवाला देते हुए 48 घंटे से कम वक्त के बाद प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला सनराइजर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। फौजी वीरो खबरां तो बाद फिर हाजिर होए हां तुहाडे मनोरंजन लई कुछ होर फिल्मी गीतां दे नाल। लो सुनो आशकी फिल्म दा गीत। आवाज़ कुमार सानू दी, गीतकार ने मदन लाल ते संगीतकार ने नदीम श्रवण।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों

0: शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को एक निर्णायक क्षण बताया जब भारत ने शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इतिहास में इस दिन को भारतीय सशस्त्र सेना की ताकत और उसके सटीक निशाना लगाने की क्षमता तथा देश की खुफिया एजेंसियों की सूझबूझ के लिए जाना जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौतियों का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है।
0: भारतीय सशस्त्र बलों ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। इस अभियान में सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच उत्कृष्ट समन्वय का प्रदर्शन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आज जयपुर में भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडरों का संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान दृढ़ संकल्प के साथ जारी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना अब सिर्फ एक नारा मात्र नहीं रह गया है। श्री घई ने बताया कि भारत के 65% से अधिक रक्षा उपकरण स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को सम्मान देने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं की सफलता और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशवासियों से भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि भारत के सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हर कीमत पर करेंगे। उपराज्यपाल ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देशभक्ति दर्शाने वाली रंगोली बनाई। देशभक्ति के विषयों और राष्ट्रीय प्रतीकों से सजी इन रंगोलियों को एक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया। इसमें स्थानीय निवासी और महिला प्रतिभागी शामिल थीं। आज के ही दिन भारतीय सशस्त्र बलों ने अत्याधुनिक मिसाइलों, ड्रोन तकनीक और सटीक खुफिया जानकारी का उपयोग करके ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था।
2: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
3: विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीते, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए ना प्रीति। जी श्रोताओं, बिल्कुल ठीक ही कहा गया है कि भय के बिना प्रीति संभव नहीं होती। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत साहस और शौर्य के प्रतिमान ऑपरेशन सिंदूर में। जब भारतीय सैन्य बलों के रणबांकुरों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों और आतंकी नेटवर्क की जड़ों को हिलाने वाली सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। पिछले वर्ष 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस अभियान में करीब 100 आतंकवादी मारे गए थे। सिंदूर नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। भारतीय

0: संस्कृति में सिंदूर सम्मान, सुरक्षा और अस्मिता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता, तकनीकी दक्षता और त्वरित निर्णय क्षमता को प्रदर्शित किया। ये अभियान भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। तस्मात् मुतिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुण भुजंगक्ष्व राज्यम समृद्धम मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन।
1: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जेडीयू के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री है। मंत्रियों ने पहले 5-5 के समूह में और फिर 6-6 के समूह में शपथ ली। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। जेडीयू के कुल 15 मंत्री हैं, जिनमें से 13 ने आज गांधी मैदान में शपथ ली। श्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने अप्रैल में सम्राट चौधरी के साथ शपथ ली थी और उन्हें उप मुख्यमंत्री नामित किया गया था। 243 सदस्यीय विधानसभा में 89 विधायकों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी है। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था। श्री विजय ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। कल उन्होंने पार्टी विधायकों की सूची और कांग्रेस का समर्थन पत्र राज्यपाल को प्रस्तुत किया था। इस समय उन्हें बहुमत दिखाने के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। वीसी के नेता थिरु मावलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद श्री विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी। उनकी पार्टी के 2 विधायक हैं। वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें। कांग्रेस पार्टी केरल में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। उनके पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि केरलम में नए मुख्यमंत्री का नाम पार्टी आलाकमान तय करेगी। हालांकि आज तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। कांग्रेस के पर्यवेक्षक नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ व्यक्तिगत बैठकें कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों का उद्देश्य सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के विचारों को जानना और उनकी मंशा को दल के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना है। राज्य में मौजूदा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री का नाम रविवार तक तय होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाश नाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे केंद्रीय शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
4: बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर चल रहे अटकलों पे विराम लग सकता है। उस दिन शाम 4 बजे न्यू टाउन के विश्व बांग्ला कॉन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधानमंडल दल की पहली बैठक बुलाया गया है। उसी बैठक में औपचारिक रूप से विधानमंडल दल की नेता का चयन हो सकता है, अर्थात बंगाल का नया मुख्यमंत्री के ताज किसके सर सजेगा, इसके संकेत इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से मिल सकता है। राजनीतिक महल की नजर एक

0: और भाकपा भी टिकी हुई है। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के चयन के लिए इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कलकत्ते में मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेतृत्व चाहते हैं कि नेता के चयन सर्वसम्मति से हो, साथ ही सरकार गठन के पहले विधायकों को एकजुट रखने का संदेश भी देना चाहते हैं दल। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे कभी नहीं झुके। इस बीच पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में राज्य पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 सदस्य विशेष जांच दल का भी गठन किया है। कल रात हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी तथा अन्य राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के दौरान लागू आचार संहिता को हटा दिया गया है। आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में फिर से मतदान होने के कारण वहां आचार संहिता लागू रहेगी। फलता में मतदान 21 मई को और मतगणना 24 मई को होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल XH या AR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
2: आज से एक दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है।
1: अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए गए अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। सऊदी अरब ने इस अभियान में शामिल अमेरिकी विमानों को अनुमति नहीं दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। हैदराबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडिया वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। रंगली धरती, रंगली धरती प्रोग्राम च अज दे गायक कलाकार ने पूरन शाकोटी। आउट सुनते हैं एना दी आवाज़ च। प्रोग्राम च सब तो पहले न्यू ला लिया दिल बेपरवाह दे नाल।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्प

प्रोग्राम चल रहा जी पंजाबी फिल्म संगीत। प्रोग्राम का अगला गीत असानू मान वतना दा। इस फिल्म का गीत तुहानू सुनान जा रही हूँ आवाज़ा ने हरभजन मान ते जसविंदर नरूला दियाँ।

0: मायरा तो जल्दी आई हुसन रब्बी यारी
1: मायरा तो जल्दी आई हुसन रब्बी यारी
2: छल्ला जोड़े

0: ऐसे करके रब दे घर विच इश्क होया मंजूर,
1: ऐसे करके रब दे घर विच इश्क होया मंजूर।
0: कंगनी कंगनी

अकाल पुरख परमात्मा कुल सृष्टि दे जीवां दा पिता है, मित्र है, प्राता है, प्राणा दा दाता है, सुखां दा दाता है, सबना दा ठाकुर है, सबना दा स्वामी है। जा इंज कह लईए कि उस अकाल पुरख प्रभु तो बिना दूजा होर कोई इन्ना समर्थ ही नहीं है। उते दाता दा भंडार है, सगल जियां दा दाता है। राग पैरों च साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे ने, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जी प्राण सुखदाता, तू मेरा ठाकुर, हाउ दास तेरा, तुझ बिन अवर नहीं को मेरा। सरवण करदे आ भाई अमरीक सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जी प्राण सुख दाता। इस शब्द का गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। राग माझ विच उचारे गए शब्द विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी उस सृष्टि दे पिता, सृष्टि दी माता, सृष्टि दे सज्जन मित्र प्रभु नू अपना राखा बयान करदे ने कि ओ अकाल पुरख सबनी थाई सारियां दिशावां विच सबना जियां दा राखा है। उस तो बिना होर कोई भी सहारा नहीं है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई ता पाओ केहा काड़ा जियो। सरवण करदिया भाई गोपाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। आप जी सरवण कर रहे सो भाई गोपाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन किया होया ये शब्द हुण सरवण करदे हां।

सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहेब साचा नाए, साचे नाम की तिल वड्याई, आख थके कीमत नहीं पाई। आप जी सरवण कर रहे सो पाई समुंद सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश या कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने पटना में एक रोड शो भी किया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का

0: इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। तमिलनाडु में राजनीतिक गतिरोध के बीच नई सरकार गठित करने के लिए परस्पर वार्ता जारी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आज लोकभवन में तमिलग वित्री कड़गम टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय को आमंत्रित किया। लोकभवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उधर केरलम में कांग्रेस पार्टी नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने आज नई दिल्ली में जनगणना जागरूकता के लिए 6 LED मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पहल राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान का हिस्सा है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। उधर भारतीय पुरुष रिकर्व टीम को पहले ही राउंड में हार का सामना करना पड़ा। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343 शरिया 6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100 शरिया 8 मेगाहर्ट्ज़, FM 100 शरिया 9 मेगाहर्ट्ज़, FM 103 शरिया 6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर अति DTI आकाशवाणी पंजाब सेवादाई जलंधर केंद्र। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਜ਼ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ।

शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम 10:02 ते तुसी सुनोगे क्षेत्रीय सुगम व लोक संगीत। अज इस प्रोग्राम च सुनोगे राग अभोगी कान्हड़ा, कलाकार होंगे विदुषी गिरजा देवी। साढ़े 10 बजे सुनोगे प्रोग्राम सरगम। शाम 6:20 ते तुसी सुनोगे प्रादेशिक खबरां। 7:30 बजे होणगियां पंजाबी च खबरां। 8:45 ते तुसी सुनोगे समाचार संध्या। 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 बजे स्पॉटलाइट, 9:30 बजे कंट्री वाइड ते 9:45 ते तुसी सुनोगे इनसाइट। रात 11 बजे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे समाचार हिंदी च, 11:05 ते अंग्रेजी च समाचार। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधान

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ सुनते हैं देश का गान।

0: हाँ जी रोलिया राम जी, लंघ आइए।
1: आजू आजू आजू शिंगारा सिंह जी, आजू बच्चे वाले।
0: जय हिंद जी, रोलिया राम जी, जय हिंद।
1: जय हिंद जी, शिंगारा सिंह जी, बच्चे वाले की हाल चाल है तेरा?
0: हाल चाल तगड़े ने जी, वल ने, तो हाँ सुनाओ, ठीक ठाक हो?
1: हाल चाल तगड़ा। देखो जिदा आप सारी जिक्र करते हाँ
0: जी।
1: कि समय के लिहाज के नाल अपने आप नू अपडेट, अजकल टेलीफोन भी आते ने ना, जिहड़े फोन वह भी अपडेट करने पैंदे ने,
0: सारा कुछ करना पैंदा जी।
1: है कि नहीं?
0: हाँ
1: तो जे तुसी समय के लिहाज नाल अपने आप नू, अपने काम कार नू, अपने सुभाव नू, वर्तारे नू
0: जी।
1: अपडेट नहीं करोगे तो तुसी कितें ना कितें शिंगारा सिंह जी पिछे रह जाओगे।
0: हाँ सही गल है,
1: क्योंकि अज दौड़ दुनिया की इन्नी तेजी है, रफ्तार इन्नी ज्यादा तेज है
0: जी।
1: तो जिहड़ा बंदा एक बार पिछे रह गया तो वह पिछे रह गया,
0: हाँ
1: है कि नहीं?
0: समय के लिहाज ना चलना चाहिए,
1: चलना चाहिए। हाँ। सो इस करके अपडेट का मतलब यही है कि हर रोज नवीं जानकारियां, नवीं खोजा, नवे ढंग, नवे तरीके, आप देखते खेतीबाड़ी दे विच हर तरह की नवी खोज आ रही है।
0: बिल्कुल जी,
1: है कि नहीं?
0: हाँ।
1: हुण जे आप उही रवायती पुणे के लिहाज के नाल पुरानियां तकनीकां, पुरानियां जोतां, उन्हां दे लिहाज नाल कम करांगे या उही फसली चक्कर च कम करांगे,
0: जी
1: फिर मुनाफे दे विच इजाफा जिहड़ा है वह नहीं हो सकता।
0: नहीं हो सकता। देखो हर समय अपने जिहड़े माहर आ वो अपने नवे नवे ब्यौतबंदी दसते, नवे नवे तरीके दसते आ फसलों के, जे आप नहीं अपनाने तो पिछे रहना ही रहना जी।
1: हाँ, सो इस करके अज जिदा कहने हैं ना कि हाथ ते हाथ धर के बैठण दा शिंगारा सिंह जी समा नहीं है,
0: है ही नहीं समा जी।
1: ते जिन्ना तुसी अपने आप नू काम दे विच व्यस्त रखो
0: हाँ
1: उन्ना तुसी अस्त व्यस्त होण तों बचोगे।
0: सही गल है।

0: हाँ जी, शिंगारा सिंह जी बच्चियां वालों, डॉक्टर सिमरतपाल सिंह सैनी
1: जी।
0: ये अपने नाल स्टूडियो दे विच आ गए है।
1: जी
0: विशा सजणा नूं आपां एक वारी फिर दस दईए भी पशुआं च दवाइयां दी वरतों, ये साडा अज दा विशा है
1: जी,
0: ते इस बाबत इहदी वरतों दे बाबत की सावधानियां आपां ने रखणी है, की करना है, की नहीं करना है
1: जी,
0: ये सारिया चीज़ा जड़िया है आप गल्लां बातां करांगे
1: जी।
0: तो डॉक्टर साहब, सब तो पहला तो तुहानू देहाती प्रोग्राम की बैठक च जी आया कहने।
2: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। गल ये है कि अज जिदा आप सारे जानते हाँ कि पशुओं के बहुत सारे विकार है या पशुओं के बहुत सारिया ऐसा चीज़ा है, अलामत है, जिन्हां करके पशुधन के उत्ते बड़ी दिक्कत या बड़ी मुश्किल आ रही है।
2: हाँ जी,
0: हुण इहदे कई कारण है या कई पक्ष है जिन्हां नूं आपां हमेशा विचारदे हाँ। आम तौर पर आप देखते हैं कि गर्मियों के मौसम के जो दुध देने वाले जानवर है,
2: हाँ जी,
0: उन्होंने कई तरह दिक्कत आ जाती ने, तो कि खास दिक्कत है या कि खास मुश्किल है जिड़िया आम तौर पर पशु पालकों सामने आदियाँ ने।
2: धन्यवाद। जिहड़ियां गर्मियों के मौसम है अप्रैल मई जून जुलाई, इन्हां गर्मी हीट स्ट्रोक की मेन समस्या आती है दुध देने वाले जानवरों। हुण समझने वाली गल है कि जानवर दी शरीर दे विच हीट पैदा भी हो रही है, वो कुछ खा रहा हीट पैदा करता, बाहरों हीट भी आ रही है, सो दूसरे पासे जानवर हीट गुआ भी रहा है, जिदा साह लैंदा है या पेशाब करता है या पसीना आता है। जदों हीट शरीर दे विच आउण दी दर ज़्यादा हो जाए हीट गुआउण दी दर नालों, उस वेले जानवर का जिहड़ा तापमान है, शरीरिक तापमान, बॉडी टैंपरेचर, वह वध जांदा है, तो हौली हौली जानवर हीट स्ट्रैस में चला जाता है। हीट स्ट्रैस माँ है, कई होर
0: मतलब बीमारी आती,
2: हाँ जी, होर कई जिदा दुध की पैदावार घट जाती है, जानवर घट खाता, उसकी इम्यूनिटी घट जाती है, उस इनफेक्शन हो जाती है, या कह लो प्रजनन की क्रिया के उपर बहुत माड़ा असर पैंदा। सो गर्मियों के अप्रैल मई जून जुलाई के महीनों के मेन जिहड़ी समस्या आती है जानवरों की देखभाल आप करनी है, वह हीट स्ट्रैस तो बचाना है।
0: सज्जणा नूं आपां इक वारी दस दईए कि साडे नाल डॉक्टर सिमरतपाल सैणी होरी ने पशुओं की देखभाल संबंधी, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, अपने दवाइया भी देनिया है, उन्होंने देखभाल भी करनी है, अलग अलग तरह समस्यावां आउंदियां ने, जिदा डॉक्टर साहब ने दस्सिया है कि हीट स्ट्रैस जिहड़ा ज़्यादातर गर्मी का दबाव पशुओं के आता है, उहदे नाल कई तरह के प्रभाव पैंदे है। सो इस करके तुसीं भी सानू इस विषय नाल संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हो, साडा नंबर है 0 81 23 42 173। अच्छा डॉक्टर साहब, हुण गल है कि जिदा तुसीं कहा कि आम तौर पर यह समस्या पशुओं के आती है,
2: हाँ जी,
0: हुण लवेरे भी अपने कोल एक तरह दे तां है नहीं,
2: हाँ जी,
0: गावां भी ने, मझां भी ने, बकरियां भी ने, अजकल सूर भी है, हर तरह के असीं पशु पालदे आ, क्योंकि
2: हाँ जी
0: डेयरी का धंधा जिहड़ा है वह सिर्फ गावां मझां तक ही सीमित नहीं रहा, बहुत अगे बढ़ चुकिया है।
2: हाँ जी,
0: ज़्यादातर हीट स्ट्रैस, क्योंकि बहुत सारे जानवर है मझां जिदा आपां देखदे आ,
2: हाँ जी,
0: कि मझां जिहड़ियां है वह गर्मी नूं सहार लैंदियां ने, तो जिहड़ियां गावां बलैतण गावां है उन्हां च ज़्यादा दिक्कत आउंदी है, कि ज़्यादा संवेदनशील मतलब जानवर

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2000

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: आकाशवाणी जलंधर केंद्र तो तुसी सुन रहे हो अपनी दोस्त कविता दे नाल प्रोग्राम जिंदगी हसीन है।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: आकाशवाणी जलंधर केंद्र तो तुसीं सुन रहे हो अपनी दोस्त कविता दी नाल प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। आओ अगला गीत सुनते हैं। आवाज़ दिती है श्रेया घोषाल ने और गीत दे बोल ने सुन रहा है।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा, उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर आज सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष इसी दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दोषियों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया था।
1: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
2: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
0: इस बीच नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
3: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
3: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपेट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ सालों में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
0: कनाडा में खालिस्तानी समूहों के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि चरमपंथी और अलगाववादियों का कनाडा की जमीन को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करना चिंता का विषय है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। ये सत्ता हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि राज्य शनिवार को शपथ ग्रहण के साथ अपनी अगली सरकार के गठन की ओर अग्रसर है। एक रिपोर्ट।
4: बंगाल में भारी बहुमत से जीत के बाद बीजेपी नए सरकार की शपथ ग्रहण समारोह को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्यक्रम का रूप देना चाहती है। अगले शनिवार रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बंगाल की पहली बीजेपी सरकार की शपथ होगी। दो दिन पहले से ही ब्रिगेड में मंच और सुरक्षा तैयारियों का काम शुरू हो गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय नेता मौजूद रह सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित विभिन्न राज्य की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। इस बीच राज्य में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वेत्रिकड़गम टीवीके पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिन भर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। एक रिपोर्ट।
5: दिन की शुरुआत टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर की बैठक से हुई। बैठक में नई सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करने पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल एल सुंदरेशन की कानूनी राय लेने के बाद इस मुद्दे पर विचार किया गया। सेंगो तैयान और CTR निर्मल कुमार जैसे टीवी के नेताओं ने CPI और CPIM के नेताओं से उनकी पार्टियों से समर्थन मांगा। इस बीच AIADMK भी आज रात पुदुचेरी में पार्टी के महासचिव एडप्पाडी पलानी सामी के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक कर रही है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बताया है कि आज सुबह तिरुवनंतपुरम में हुई विधायक दल की बैठक में AICC अध्यक्ष को कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन करने का अधिकार देने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: कांग्रेस विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने नव निर्वाचित विधायकों से नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि ये पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। इस बार निर्वाचित विधायकों में VD सतीशन और रमेश चेन्नीथला सहित वरिष्ठ नेता शामिल हैं। वहीं वरिष्ठ नेता KC वेणुगोपाल वर्तमान में सांसद हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने आज संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के विभिन्न घटक दलों के साथ भी चर्चा की। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस विधायक दल के नेता और अगले मुख्यमंत्री के में अंतिम निर्णय इस सप्ताह के अंत तक लिया जा सकता है। शपथ ग्रहण समारोह राज्यपाल के चेन्नई से लौटने के बाद ही होने की संभावना है। राज्यपाल वर्तमान में तमिलनाडु से संबंधित आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति पल्लू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण

करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए आज गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: यह आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी क्षमता का व्यापक विस्तार किया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में आज भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाए। कार्यक्रम में 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत को टीम का सामना चीन से होगा। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला बारिश के कारण रुका हुआ है। मैच रुकने तक लखनऊ ने 9 ओवर में बिना किसी नुकसान के 95 रन बना लिए थे। इससे पहले बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायल सीमा में कल तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरलम में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के

0: players of global supply chain. And in archery, Indian women's recurve team ensures country's first medal at World Cup Stage 2, beating South Korea in semi-final at Shanghai. That is all in the news at 9. Good night.
1: Spotlight.
2: This is Akashvani. On the first anniversary of Operation Sindoor, now we bring you a special program on India's firm response against terrorism and unparalleled valor of Indian armed forces.
0: On the intervening night of 6th and 7th May 2025, when the world was sleeping, Pakistan was jolted out of sleep and caught off guard. The skies roared and the missiles screeched over the terror camps of Pakistan, and Pakistan occupied Jammu and Kashmir. For 22 minutes, the sky was lit by the commitment of India to safeguard every inch of its territory, be it land, air or water. The commitment to track and hunt down terrorists came directly from the Prime Minister.
3: ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backer.
0: Every missile that was fired carried the sole objective of punishing the perpetrators of terror. At 1:44 a.m. on 7th of May, the government announced that it had hit the terror targets across the border. The exact words read,
4: "A little while ago, the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, from where terrorist attacks against India have been planned and directed. Altogether, 9 sites have been targeted.
0: 100 terrorists were killed in the strike." Immediately after the information was released by the government, news was broadcast by Akashwani as well.
5: इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई की बड़ी खबर आ रही है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है।
6: Indian Armed Forces launched Operation Sindoor post-midnight, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir.
7: भारतीय सेना ने पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर कड़ा प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया।
8: Indian Army carries out military operation Sindoor on 9 terror targets of Pakistan and Pakistan occupied Jammu and Kashmir.
0: Foreign Secretary Vikram Misri, while briefing the media about the operation, announced that India's response was focused, measured and non-escalatory in nature.
9: Earlier this morning, as you would be aware, India exercised its right to respond and preempt as well as deter more such cross-border attacks. These actions were measured, non-escalatory, proportionate and responsible. They focused on dismantling the terrorist infrastructure.
0: What followed was unprecedented in the history of the nation. India struck again and reached hundreds of kilometers into mainland Pakistan without even crossing the border. Defense Minister Rajnath Singh, while speaking about the operation, said,
10: "हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है।
0: India's retaliatory response was unimaginable.

0: Countrywide.
1: नमस्कार, कंट्री वाइड कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ल और आज हम चर्चा करेंगे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 के बारे में। और आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ एके भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले आपसे हम यही समझना चाहेंगे कि जो एक नया ऐलान कैबिनेट की बैठक में हुआ है, उसके मायने क्या लगाए जाए, सरकार ने 5.0 इस स्कीम की क्यों मंजूरी दी और इसका मुख्य उद्देश्य आप क्या देखते हैं?
2: ये जो आपने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0, इसका मतलब ये इसका पांचवा चरण है ये। और इससे पहले ये जब कोविड का जब प्रॉब्लम आया था हमें 2020 में, उसी समय इसका पहला चरण का इंट्रोडक्शन हुआ था। उसके बाद ऐसे 3-4 चरण आए हैं और हर बार क्या होता है कि हमारी जो इंडस्ट्री की क्रेडिट लेने की जो क्षमता जो है उसमें एक कम पहुंचता है जब भी कोई क्राइसिस आती है। और यही जो वेस्ट एशिया में जो युद्ध हो रहा है उससे जो तेलों के दाम बढ़ गए, उससे हमारे बहुत सारे जो इकाइयां हैं, बहुत सारे जो इंडस्ट्री हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ गई है और उनकी क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो होती है, वर्किंग कैपिटल नीड्स जो होती हैं, जरूरतें जो होती हैं, उसको पूरे करने के लिए दिक्कतें आ रही हैं। तो ये स्कीम जो है ये करीबन जो एमएसएमई सेक्टर है, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए है प्रधानतः, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें एक जो एंटरप्राइजेस की जो क्रेडिट की जो एक गारंटी होती है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्रेडिट ले रहा है तो उस क्रेडिट लेने में अगर लॉस हो जाए उस लोन में या लोन को वापस ना कर सके, उसकी जो रिस्क जो होती है उसकी गारंटी होती है। तो समय की जो असुविधा जो है कि इस समय रिस्क बढ़ जाती हैं और उससे क्या होता है कि अगर ये गारंटी नहीं मिले तो इंटरेस्ट रेट में बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट उससे कॉस्ट बढ़ जाता है उससे। तो सरकार ने ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 का जो ऐलान किया है, उससे सारे जो एमएसएमई सेक्टर के यूनिट जो है, हमारे देश में करीबन 7 करोड़ ऐसे संस्थाएं हैं जिसे हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं, और वो 7 करोड़ जो इकाइयां हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण ये है कि वो करीबन देश की जीडीपी जो है, आर्थिक जो साइज जो है, उसकी करीब 30% होती है और एमएसएमई करीबन 45% हमारे एक्सपोर्ट्स करता है। तो इसका महत्वपूर्ण बहुत चीज है और उसके लिए सरकार ने कहा कि 2.5 लाख करोड़ की जो लोन जो है उसकी गारंटी सरकार देगी। इसका मतलब अगर 2.5 लाख करोड़ की जो अगर लोन में कुछ वापस करने में कोई दिक्कतें आती है तो वो समस्या इस गारंटी से पूर्ण होगी। करीबन 18,000 करोड़ की जो लायबिलिटी है वो सरकार लेगी और 2.5 लाख करोड़ का जो लोन जो है वो लोन बैंकिंग व्यवस्था है, फाइनेंशियल सेक्टर है, वो उनको देंगे। तो मोटी मोटी बात ये है कि एक तरफ एमएसएमई सेक्टर को एक गारंटी मिलेगी उनके लोन के ऊपर, और ये गारंटी 5,000 करोड़ की ये गारंटी जो एयरलाइन सेक्टर है उनको भी दी गई है, क्योंकि इस वेस्ट एशिया के क्राइसिस में जो एविएशन सेक्टर है उसको भी काफी बहुत धक्का पहुंचा है, तो उनके लिए भी 5,000 करोड़ के लोन के ऊपर गारंटी देने की एक प्रावधान किया गया है। और बाकी बिजनेस को वो भी उनको ये प्रावधान है। एमएसएमई सेक्टर में 100% की जो लोन जो है उसको गारंटी मिलेगी, पर बाकी जो बिजनेसेस हैं उसमें सिर्फ 90% की गारंटी मिलेगी। एयरलाइन सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको अगर गारंटी दी जाएगी उनमें भी 90% की गारंटी मिलेगी। पूरी बात यह है कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस से कंपनियां को कॉस्ट में दिक्कतें आ रही है, नौकरी को बरकरार रखने में दिक्कतें आ रही है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक रिलीफ मेजर है। और इससे मैं समझता हूं कि जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है और नौकरी को बरकरार रखने की जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें नहीं आएंगी। 7 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स हैं इस देश के, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक सुविधा
1: जी और एक बहुत बड़ी राहत होगी, खासतौर पर छोटी और मझोली उद्योग जगत के लिए। और जिस हिसाब से वेस्ट एशिया क्राइसिस भारत पर एक छोटा असर देखने को जरूर मिल रहा था कि कंपनियों की वर्किंग कैपिटल की दिक्कतें आ रही थी, साथ ही साथ जो कच्चे माल के आयात की दिक्कतें होती थी वो बढ़ती जा रही थी, और इन जगहों पर जो एक निर्यात होता है वो भी उस मुकाबले नहीं हो पा रहा था। निर्यात हो रहा था जरूर, लेकिन उस मुकाबले नहीं हो रहा था। तो अब आपको क्या लगता है, एक

0: सहारा मिलेगा और सहारा के बाद इंडस्ट्री जो है एक तरह से अपने पैरों पर दोबारा से मजबूती से खड़े होने में कामयाब हो पाएगी।
1: इसमें सहारा तो जरूर मिलेगा, क्योंकि जैसे इस लोन की गारंटी के साथ साथ ये जो एक 7 साल की जो लोन दी जाएगी, इसमें ये कवरेज होगा उसका, ये एयरलाइन के लिए है। और जो एमएसएमई कंपनियां जो हैं, 7 करोड़ कंपनियां जो हैं, उनकी जो लोन की जो अवधि होगी वो 5 साल की होगी, और 5 साल के अंदर 1 साल की मॉरेटोरियम भी रहेगा, जिसका मतलब अगर मान लीजिए वो पैसा वापस ना देते हैं उसकी मॉरेटोरियम रहेगी, और एयरलाइन के लिए 2 साल की मॉरेटोरियम रहेगी। और ये व्यवस्था आज से मार्च 31, 2027 तक लागू रहेगी। इसका मतलब अगले 1 साल करीबन 11 महीने या 10 महीने तक ये व्यवस्था का उपयोग एमएसएमई कंपनियां, विमानन कंपनियां और बाकी बिजनेसेस कर सकते हैं, लेकर पूरी तरह से उनको बहुत बड़ा एक राहत जरूर मिलेगा।
0: जी
1: उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कह दूं, ये राहत तो मिलेगा, पर ऐसी 2.5 लाख करोड़ की राहत से बहुत लोग, इनका शंका होता है कि सरकार की जो खजाना जो है, खजाने में कितनी बहुत, पर क्रेडिट गारंटी स्कीम का जो एक बहुत बड़ी एक खूबी है ये कि 2.5 लाख करोड़ का लोन तो व्यवस्था की गई है, पर सरकार के खजाने में इसका इम्पैक्ट सिर्फ 18,000 करोड़ का ही होगा। और जिनको मॉरेटोरियम के बाद जरूरत होगा, 2 साल का मॉरेटोरियम जो विमानन कंपनी की
0: हाँ
1: होगी या बाकी कंपनी का 1 साल का मॉरेटोरियम है, उसके बाद अगर वो पैसा वापस दे देते हैं अच्छी बात है, और अगर गारंटी की जरूरत होगी उसके लिए इंश्योरेंस का भी व्यवस्था होता है, तो
0: जी
1: मैं समझता हूं कि इतने कम रिस्क से 2.5 लाख करोड़ की जो एक वर्किंग कैपिटल की जो प्रावधान की गई है, इससे बहुत बड़ी एक राहत, नौकरी की व्यवस्था, और सबसे बड़ी बात जिसकी जिक्र आपने की, निर्यात का एक प्रोत्साहन दिया जा सके।
0: जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे भट्टाचार्य जी कि जिस हिसाब से लगातार सरकार की कोशिश रही है कि कारोबार जगत को मुश्किलें उनकी जो है वो आसान की जाएं, तो ये मोरेटोरियम और जो क्रेडिट गारंटी का ड्यूरेशन, समय अवधि ये बढ़ाई गई है, ये स्थिरता किस हिसाब से देगी इस पूरे सेक्टर को लिए इस कर्ज के दौरान?
1: देखिए, मोरेटोरियम जो होता है उससे क्या होता है कि जो कंपनी को लोन वापस देने का जो अवधि होती है उसमें जो उनकी अवधि बढ़ जाती है। जैसे कि अगर एयरलाइन कंपनी का 7 साल का लोन है, उसके अंदर 2 साल का मोरेटोरियम भी है, इसका मतलब उनको उसी समय इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बाकी कंपनियों का 5 साल का अवधि है, पर उसके अंदर 1 साल का मोरेटोरियम है, उसका मतलब 1 साल तक कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि इससे जो क्रेडिट अवेलेबल होती है, पहली बात तो यह कि ऐसे समय में जब जो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखती हैं कि कंपनियां जरा दिक्कत में आ गई हैं, वो लोन देने में थोड़ा झिझकते हैं, कतराते हैं, जब ये स्कीम लागू होता है तब उनको एक आश्वासन मिलता है कि ये लोन देने से भी अगर लोन वापस ना कर सके, ये गारंटी मिलेगी और गारंटी सरकार दे रही है। तो ये बहुत बड़ा एक हौसला बढ़ाता है फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, और दूसरी तरफ ये कंपनियों को एनकरेज करता है कि वो छटनी ना करे, लोगों को गांव ना वापस भेज दे कि भाई काम नहीं है आप बंद कीजिए आप,
0: जी
1: उससे बड़ा एक हौसला भी बढ़ता है, इकोनॉमी का एक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार ने कुछ दिन पहले जो एक्साइज जो डीजल एंड पेट्रोल में उन्होंने घटा दिया था टैक्स, और उस घटाने से जो तेल और तेलों के दाम जो रिटेल मार्केट में जो हर देशों में जो बढ़ गए हैं, वो हमारे जो एमएसएमई सेक्टर हैं, रिटेल कंज्यूमर्स जो हैं, उनके लिए अभी तक कोई एक्स्ट्रा बर्डन अभी तक नहीं आया है। हालांकि गैस में थोड़ा दाम बढ़ा है, बाकी चीजों में दाम बढ़ा है, पर पेट्रोल डीजल जो हर इंडस्ट्री का इस्तेमाल करना पड़ता है उसमें कोई दाम नहीं बढ़ा है। तो मैं
0: बिल्कुल
1: समझता हूँ ये एक सार्विक एक अप्रोच है, जिससे कि अगर ये क्राइसिस चले या ज्यादा दिन ना चले, उसके सामने ये टेम्पोररी मेजर्स हैं, वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद देखना पड़ेगा कि और क्या नीतियों की लागू करना होगा, वो देख सकते हैं।
0: बिल्कुल। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो खासतौर पर 5,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि एविएशन सेक्टर के लिए अलग से रखी गई है, उसका क्या फायदा आप होते हुए देखते हैं? क्योंकि विमानन कंपनियों का लंबे समय से कहना रहा है कि ETF के बढ़ते दाम उनके लिए दिक्कत का सबब बनते जा रहे हैं, साथ ही जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसमें तमाम जगहों पर रूट्स बंद हो जाते हैं, तो उन्हें अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, तो जाहिर है उनका खर्च बढ़ता है और किराया बढ़ाने की एक सीमा होती है। तो ऐसे में ये ओवरऑल एयरलाइन सेक्टर के लिए कितना फायदे का सौदा साबित हो सकता है और वहां की नौकरियों के लिए और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक अमृत कहें या वरदान कहें बन सकता है?
1: जो विमानन कंपनियां हैं जो बाहर में अपना सेवा कर रहे हैं, उनके लिए मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा काम नहीं देगा। जो हमारे देश में जो अपना सर्विस कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा काम आएगा उनका, क्योंकि

0: उनकी ATF की प्राइस एविएशन टरबाइन फ्यूल के दाम तो बड़ी है
1: बिल्कुल
0: और उनके जो फेयर्स थोड़े बहुत फेयर भी बढ़े हैं, पर उसके बावजूद बाकी सारे ऐसे कॉस्ट हैं उनमें भी काफी इजाफा हुआ है। इसीलिए सरकार ने क्या किया है कि जो विमानन कंपनियां को, ये नहीं कि पैसा उनको दे रहे हैं, ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होगी उसके ऊपर सरकार गारंटी देगी। उससे क्या होगा कि जो फाइनेंशियल सेक्टर और या बैंकिंग व्यवस्था जो है एयरलाइन कंपनियों को लोन दे सके, कंटिन्यू कर सके, क्योंकि उनको आश्वासन मिलेगा कि ये लोन वापस करने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। हालांकि विमानन कंपनी को कठिनाई तो हो रही है, पर ये एक ऐसा समय है कि ये 2 साल का मोरेटोरियम और 7 साल का लोन के ऊपर गारंटी, मैं समझता हूँ इसमें हौसला बढ़ाने का बात है, पर एयरलाइन को कठिनाई तो जरूर हो रही है, होती रहेगी जब तक ना तेलों के दाम नीचे ना आए।
1: आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन उद्योगों के लिए खास तौर पर ये राहत का ऐलान किया गया है, उससे जुड़े तमाम सेक्टर हैं जो इनसे प्रभावित होते होंगे, क्या आपको लगता है उन्हें भी और एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को भी इसका फायदा मिलता नजर आएगा?
0: देखिए, ऐसा होता है कि अगर 7 करोड़ कंपनियां हैं हमारे देश में, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो एमएसएमई सेक्टर में कंपनियां हैं, करीबन 99% जो कंपनियां जो हैं वो छोटी लघु उद्योग हैं, बहुत ही माइक्रो यूनिट्स हैं वो, और उसमें 5 से 10 लोग काम करते हैं, और यही एमएसएमई कंपनियां बड़े बड़े कंपनियों को सप्लाई करती हैं, करीबन 40% एक्सपोर्ट्स करती हैं, निर्यात करती हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इनमें ये गारंटी मिलेंगी, इनकी वर्किंग कैपिटल नीड्स में गारंटी मिलेगी, तो उनकी जो कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है उसमें थोड़ी बहुत उनकी सहूलियत होगी, और उसका बेनिफिट जो जो कंपनियां उनके साथ बिजनेस कर रही हैं, रिलेशनशिप रख रही हैं, उनको भी एक सेकेंड ऑर्डर बेनिफिट जरूर मिलेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
1: घरेलू विमानन कंपनियों के लिए या विमानन कंपनियों के जो घरेलू ऑपरेशंस हैं उन पर फायदा पहुंचने की बात आपने कही, तो तमाम कंपनियों की एक विस्तार योजनाएं थी कि वो घरेलू स्तर पर नए रूट खोलें, तो वो एक तरह से ठंडे बस्ते में जाते हुए दिखाई दे रहे थे, या कंपनियों का जो बढ़ता खर्चा था उससे उन्हें आशंका थी कि अब आगे वो क्या करें, तो अब आपको लगता है वो तमाम चुनौतियां काफी हद तक हल हो रही हैं?
0: मैं ये समझता हूँ कि विमानन कंपनियों ने अपनी जो विदेश की जो उनके सर्विसेज जो हैं उनमें रोक लगा दी गई, और जो डोमेस्टिक हमारे देश के अंदर अंतरदेशीय जो सेवाएं जो हैं उसमें मैं समझता हूँ कि ज्यादा प्रसार नहीं होगा, पर जो अभी भी सर्विसेज चल रही हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा। ये जो स्टेप्स जो है वो स्टेप उसी लिए लिया गया है, इसमें जो एग्जिस्टिंग जो सर्विसेज हैं उसमें कोई हानि नहीं पहुंची, धक्का नहीं पहुंचेगा,
1: जी
0: पर विस्तार करना या प्रसारण करना और भी इसको बढ़ाना, उसमें मैं समझता हूँ कि ये चीज विमानन कंपनियां अब उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगी, क्योंकि ये समय ऐसा है जो इसको एसेस करने के लिए समय लगेगा, पर जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं सर्विसेज हैं उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। ये गारंटी स्कीम का यही एक बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा।
1: और सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो ये 2 साल का एक पूरा का पूरा फायदा मिलता नजर आ रहा है छोटी मझोली कंपनियों के लिए, क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस इतने दिनों से चल रहा है, 2 महीने के करीब का वक्त हो रहा है और उससे भी ज्यादा समय हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि जितना एक असर था उस असर से निपटने के लिए मददगार होगा, या और भी आने वाले दिनों में चुनौतियां आएंगी तो उसके लिए नए कदम उठाने की भी जरूरत रहेगी?
0: मान लीजिए ये युद्ध विराम अभी हो जाता है या कोई पीस पैक्ट कल परसों तरसों में हो जाता है, तो उसके बाद भी कंपनियों की समस्याएं जो हैं वो करीबन 6 महीने 1 साल तक चलेगा। इसीलिए ये स्कीम को मार्च 31, 2027 तक लागू किया गया है, और इसीलिए 1 साल का मोरेटोरियम दिया गया है कंपनियों को और विमानन कंपनियों को 2 साल का मोरेटोरियम दिया गया है, और ये लोन 7 साल के दिया गया है विमानन कंपनियों को और कंपनी को 5 साल का विमानन दिया है।
1: जी
0: एमएसएमई कंपनियों को अपने 20% जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर बेस करके 100 करोड़ की जो लोन जो है वो देने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह विमानन कंपनियों को 1,500 करोड़ तक की लोन गारंटी की व्यवस्था की गई है। तो इसका कारण यही है कि जो वेस्ट एशिया का अगर कॉन्फ्लिक्ट आज भी अगर सुधर जाए तो मैं समझता हूं कि जो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट और इम्पैक्ट जो है वो अभी भी चलता रहेगा, 6 महीने तक चल सकता है, 7 महीने तक चलता सकता है, उसके बाद ही अवस्था साधारण में पहुंचेगी।
1: बिल्कुल भट्टाचार्य साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अहम जानकारी दी और काफी बेहतरीन सरल तरीके से इन बातों को समझाया।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

ये आकाशवाणी है, अखिल भारतीय प्रादेशिक लोक संगीत एवं सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको श्री राजेश सोदातर के गुजराती लोकगीत सुनवाएंगे। सोदातर राजेश जगदीश चंद्र अहमदाबाद गुजरात के एक जाने माने गुजराती

आओ सुनदे हां क्षेत्रीय सुगम व लोक संगीत दा शास्त्रीय गायन च राग अभोगी कानड़ा, कलाकार विदुषी गिरजा देवी।

अजन तेरे चरण की होए रहा सदतूर, नानक शरण तुहारिया पेखाओ सदा हजूर। ये फरमान साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा उचारित श्लोक दे रूप विच साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी दे अंग 518 ते सुभाए मान है। जीव रूपी स्त्री उस सज्जन प्रभु दे चरणा दी तूर होना लोचदी है ते उस दी सरण विच रह के उस दे दीदार करना लोचदी है। सज्जन प्रभु जीव रूपी स्त्री नू अत प्यारा लगदा है, उसनू साजनड़ा कह के संबोधन करदी है। उसनू ए वी भरोसा है कि ओ सोना प्रभु ओ साजनड़ा सदा उस दे निकट है। साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा। इस श्लोक दा गायन कीता है भाई मनजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: प्रभ सदा सहाई धन हमारा मीत। विचारे जा रहे शब्द दियां अगलियां पंक्तियां ने जानी अड़ा हर जानी अड़ा नैन अलोयड़ा हर जानी अड़ा। परमात्मा तो मैनू जिंद तो भी प्यारा है, उस जान तो प्यारे प्रभु नूं मैं अपनियां अखां नाल वेख लिया है। इस पंक्ति विच अलोयड़ा दा अर्थ है वेखना। नैन अलोया घट घट सोया अत अमृत परे गूढ़ा, भाव मैं अखी वेख लिया है कि वह अत दा मिठा ते प्यारा मित्र प्रभु हरेक शरीर विच वस रहा है। गुरु जी ने प्रभु मित्र लई शब्द वरत्या है परे गूढ़ा, भाव वह परमात्मा तो मेरा गूढ़ा मित्र है। ऐसे मित्र प्रभु ते सानू बहुत माण है। मैं कदे भी सोहणे प्रभु दा आसरा नहीं छड्डना, फुरमान है हों ना छोड़ो कंत पासरा, सदा रंगीला लाल प्यारा एह महिंजा आसरा रहाओ। सज्जन तू है सैन तू मैं तुझ उपर बहु माणिया। शब्द दियां अगलियां पंक्तियां विच फुरमान है, नाल होवंदा लह न सकंदा सुआओ न जाने मूड़ा। हैरानी वाली गल ए है कि नाल वसदे सज्जन प्रभु दे मिलाप वाले आनंद तो यह मूर्ख जीव सखना ही रहिंदा है। भगत रविदास जी ने सोरठ राग विच एक दृष्टांत दिता है कि जिमें एक राजे नूं तख्त ते बैठिया नींद आ गई, सुपने विच मंगता बन के दुखी हो के रोंदा फिरदा है। राज भाग कोल है पर नींद ने भुला दिता। बिल्कुल ऐसी ही हालत इस मनुख दी है। फुरमान है नरपत एक सिंघासन सोया, सुपने पया भिखारी अछत राज बिछरत दुख पाया, सो गत पई हमारी। अगलियां पंक्तियां हन, माया मद माता होछी बाता मिलन न जाई भरम धड़ा, भाव मूर्ख जीव माया दे नशे विच मस्त हो के होछियां ते व्यर्थ गल्लां ही करदा रहिंदा। मन विच टिके भरम करके प्रभु मिलाप नहीं हो सकता। विचारे जा रहे पदे दियां आखरी पंक्तियां ने कहो नानक गुर बिन नाहीं सूझै हर साजन सब कै निकट खड़ा। गुरु जी समझा रहे ने कि वह सज्जन प्रभु सब जीवां दे नेड़े ही वसदा है, पर गुरु दे ज्ञान तो बिना वह दिसदा नहीं। गुरु तो बिना प्रभु दा मिलाप नहीं हो सकता।
1: साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा। इस रचना की व्याख्या की सी ज्ञानी जगसीर सिंह होरा। आवो सजना हो देखा दर्शन तेरा राम, कर आपनड़े खड़ी तका मैं मन चाओ कनेरा राम। अपने मन ही अंतर प्रभु दे वासे दी लोचा गुरमुख जना नू हुंदी है। राग सूही छंत महला तीजा कर दूजा सिरलेख अधीन उचारी बाणी विच साहिब श्री गुरु अमरदास जी अपने मन दी आनंद दी अवस्था नू इंज बयान करदे हन। साजन आए वुठे कर माही हर गुण गावै तृप्त अघाही। सुनदे हां गुरशरण कौर वासु होरां पासों ए वार्ता।
2: गुरबाणी दा ए फुरमान श्री गुरु अमरदास जी दी रचना है जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे अंग 768 ते सूही राग विच दर्ज है। इस विच गुरु साहिब दसदे हन कि मेरे सज्जन प्रभु जी मेरे हिरदे विच आ के वस गए हन, उन्हां दे गुण गाउण दा अवसर बन गया है ते पूर्ण संतुष्टि अथवा संपूर्णता दा अहसास छा गया है। साजन आए उठे कर माही हर गुण गावह तृप्त अगाही। पर संपूर्णता दा ए अहसास सदा लई नहीं बनिया रहिंदा। जद तक मनुख अपनी जोत सरूपी होंद नाल जुड़िया रहिंदा है वो संपूर्णता नू मानदा है, ते जदों ही ये अपनी आत्मक होंद नू भुलदा है वह दुखां ते संकटां विच फस जांदा है। मनुख अपनी मूल प्रकृति अनुसार मादे ते आत्मा दा संगम है। गुरु अमरदास जी अनुसार जन्म तो पहला ही रब शरीर विच अपनी जोत रखदा है, जिमें ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी

न तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बनहरा। आप जी सरवण कर रहे सो बीबी आशुप्रीत कौर ते उन्हां दे जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

0: जगदार काम निमशत पुछिए बह बह कर विचार अंधी रैयत ज्ञान विहूणी पाए परि मुर्दा ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिंगार उचे कूके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जत संजय करे प्यार तरमी तरम करे गावा वै मंगे मोक द्वार जति सदा वै जुगतन जाने छठ मै करवार
1: सब को पूरा आपे होवे कट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तोलिया जपे महला पहला
0: बजस बज के नानक सत्या में खन सोए सबनी शाला मारिया करता करे सो होए अगे जात ना जोर है गे जू नवे जिनके लख

अशल छला गावे गुण तुम अटल मंडल वै भगत पाए रस जान्यो कब कल सुजाथ गा।

गावे गुण वर्ण चार खट दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंथ गुणा गावे गुण शेष सहस जे बारस आद्यंत लिवलाग तुना गावे गुण महादेव।

0: गुण गावे मन व्यास, जिन वेद व्याकरण विचार है, ब्रह्मा गुण उच्चरै जिन कुम सब सिट सवारे, ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझान्यो, जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन वाण्यो, ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझान्यो, जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माण्यो।
1: गुण गावे नवनाथ तन गुर साज सुमायो, मां ताता गुण रवे जेन चकर वे कहायो, गुण गावे बलरा सबद पताल बसंत, परथर गुण उच्चरै सदा गुर संग रहा।

0: जाको मन ध्यान तारे फेरत सकल जोग कबहु को पावे आत्म पर गास को वेद बाणी सहित बेरंच जस गावे जाको सेवा मन गहे ना तो जात का बलास को जाको जोगी जाति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फेर तो उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बढ़ाई दई गोर रामदास को।
1: देह ना गेह ना नेह ना नीता माया मत कहां लोगारो शतर ना पतर ना चौर ना चावर बहती जात हृदय ना बिचारो रथ ना असव ना गज सिंघासन छिन में त्यागत नांग सिधारो सूर ना बीर ना मीर ना खानम संग ना को दृष्ट निहारो कोट ना ओट ना कोस ना छोटा करत विकार दो कर चारो मित्र ना पुत्र क्लतर साजन साख उल्टत जात बिरक्की शारो दीन दयाल पुरख प्रभ पूरण छिन छिन सिमरो अगम पारो श्रीपत नाथ।

सच नाम करतारे सोदर नानक संग रहो ताते अंगद रहना प्रगट तास चरण लिव रहो तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवन बखानो जो गुण अलख अगम तिणै गुण अंत न जानो बोहिथो विदाते निर्मयो

सोरठ महला पंजवा हमरी गणत ना गणिया काई अपना बिरद पछाण हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंग माण।

0: अपराधी दुना निवे जो हंता मिर्गा है शीश निवाय क्या किए जाने देख सुदे जाए महला पहला।
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिल पुज स्वगल समादन मुख झूठ विभूख धारण तय पाल त्याल विचारन गल माल तिलक ललाटन दो तोती बस्त कपाटन जे जान बरमंग करमंग सब फोक निश्चो कर।

सूत जत गंडी सतवट एहो जनेऊ जी कहाई ता पांडे कत ना एहो टुटै ना मल लगे ना एहो जले ना जाए तन सो मानस नानका जोगल चले पाए चौकड़ मुलन आया बै चौके पाया सिखा कान चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थे ओह मुआ चढ़ पिया वे तगा गया महल।

0: महला पहला गौ ब्राह्मण कौ कर लाभ गोबर तरण ना जाई धोती टीका तह जप माली तान मले छा खाई अंतर पूजा पड़े कते बा संजम तुरका पाए छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाय तरंदा महला पहला
1: मांस खाने करे निवाज श्री भगवान तिन गलता तिन कर